0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 33, लेह 15, जबकि पुलवामा, शोपियां और बारामूला में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि PIA के पहले मालियाती साल की तकमील मुल्की और बैन-उल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के असलाहत और तरक्की के अज़्म का वाज़ेह पैगाम है। नायब वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली ने बलोचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए वफ़ाक़ी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तआवुन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर इंसानी हुकूक ने मज़हबी आज़ादी के फ़रोग़ और पुरअमन वक़ाए बाहमी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

101 FM

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

0: Big socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101
3: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज़, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज़। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: Three socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101
3: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: Big socks. And now you are tuned into
1: FM 101
2: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
4: Listening to FM 101, a bale bale o shower shower.
5: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
6: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सिंध सास माहिते पर एक सेमिनार आज इस्लामाबाद में हो रहा है। बैन अल-अक़वामी मीडिया और तहकीकी इदारों ने मारके हक में पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और भारत की इबरतनाक शिकस्त को तस्लीम किया है। अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारे ने कल से इतवार तक सूबे के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों के पहले सिलसिले के हवाले से इंतबाह जारी कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: I love FM 101.

0: Now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सिंध तास माहिते पर एक सेमिनार इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें पाकिस्तान के आबी मसाइल को उजागर किया जा रहा है। बैनुल अक्वामी मीडिया और तहकीकी इदारों ने मारके हक में पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और भारत की इबरतनाक शिकस्त को तस्लीम किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हंगामी इमदादी इदारों ने कल से पीर तक मानसून बारिशों के हवाले से इंतबाह जारी किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है और अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है और अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज,

0: साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
1: I love FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

0: साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत, साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन

हर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब
3: 101 FM।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब
3: 101 FM।
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: This is FM
3: 101. 101 FM.
6: ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: 24 घंटे 7 दिन फाल जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान हर औरत है बाइख्तियार बढ़ रहा है सभी का मान हुकूमत पंजाब
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे क्यों जी कोई शक है क्या

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Coming up next, 101.
1: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सिंतास मुआहदे पर एक बैन अल-अक़वामी सेमिनार इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें पाकिस्तान के आबी मसाइल को उजागर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि हुकूमत दरियाए सिंध के आबी निज़ाम पर पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिले तंसीख हक का हर कीमत पर तहफ्फुज़ करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा 5 बरसों के दौरान सूबे भर में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का फैसला किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने आज आइंदा माली साल के लिए 286 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हेलो हाँ आतंक वेयर आर यू कितनी देर से
2: ऑन द वे यार बस आधा घंटा दे
1: चल बेटा जल्दी कर।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: We'll be right back after this short commercial.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज़, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज़। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
4: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: तो फिर ट्यून करना मत भूलना आपकी अपनी आरजे शिपा मलिक को एवरी ट्यूसडे ओनली ऑन FM 101 लाहौर।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

आलम है चाय का, और बहुत चाय चाय हो गई है, बट वो कहते हैं ना गर्मी को गर्मी ही थोड़ा सा काम डाउन करती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट, यू नो, हल्की फुल्की सी दो, गर्मी ने अपने पूरे नज़ारे देके ही जाने हैं, बट फिर भी हम कहते हैं ना कि चलो यार थोड़ी सी उम्मीद ही रख लें कि शायद ठीक हो जाए, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं प्लीज़, और अरबी वाला प्लीज़ भी कह देती हूँ, प्लीज़ मौसम के ऊपर या अल्लाह थोड़ा सा करम कर दे। यहाँ पर तो महकमा मौसमियात वालों ने जो जान ले रखी है, वो तो बोल रहे हैं कि कोई हालात नहीं है, आगे भी बहुत गर्मी हीट वेव है एंड ब्ला ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट, बट यू नो ऐसे में अगर रब तेरा करम हो जाए तो क्या ही मज़े हैं, बारिश हो जाए और फिर मैं मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ पे इधर प्रेडिक्शन आती है और हम यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि जी बारिश बहुत ज़्यादा है और हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं और आगे भी जो है हीट वेव चलेगी, तो अगले ही लम्हे शाम को कुछ घंटों के बाद पता चलता है कि मौसम चेंज हो गया है और फिर हम कहते हैं ओके गॉड इज़ ऑलवेज इज़ लाइक आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ ना, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, सो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, 7 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है, सो मोस्ट वेलकम। शो में शामिल आप हो सकते हैं डेफिनेटली, शो में कैसे शामिल होना है आप सभी लोगों को पता है, फेसबुक हैंडल है facebook.com/FM101Lahore, और अगर आप लाहौर में नहीं हैं, दुनिया के किसी भी और कोने में हैं, तो भी मोस्ट वेलकम, ज़रूर शामिल हो जाइए शो में। कैसे शामिल होना है? अच्छा, कंप्यूटर और ये काफ़ी दिनों के बाद जब आते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब ऐसे लग रहा होता है कि सेटल डाउन करनी पड़ती हैं। खैर, www.radio.gov.pk/livestreaming के थ्रू जो है आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, प्लस नंबर है 04221100101, एंड राइट एट द मोमेंट 6:30 बजे से पहले कॉल मैं लाऊँ को ना, यू नो मी, तो नहीं लेनी हमने कॉल, शो शुरू करते हैं, हैवी गो। लाहौर ऑन है, FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, आरजे शिवा मलिक, तो आ जाओ दोस्तों।

राइट, देखना है कि दीवाने कहाँ ठहरते हैं. एंड आई वुड से दैट फरेब तो दे दिया, बस अब दिखाई मत देना. Alright, Lahore on hai, FM 101.2 Pakistan, Lahore, aur RJ Shiva Malik aapke saath saath. Okay, to jurm bas itna hai, jurm. अच्छा, जिसको लोग जुर्म कहना शुरू कर देते हैं वो रब की नज़र में पता नहीं क्या होती है बात. और ये मैं बड़ी अच्छी एक चीज़ देख रही थी कि हम सारे जो हैं अपनी अपनी नज़र में छोटे छोटे खुदा जो हैं खुद से ही बने हुए हैं, और खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही जज कर लेते हैं, सारा कुछ हम खुद ही से डिसाइड करके रखे होते हैं कि अच्छा ठीक है, फ़लाने ये बात की है तो उसने बड़ा कोई गुनाह कर दिया है. प्रिसेप्शन हैं लोगों के. अच्छा, फ़लाने इस तरह बात की है तो इसका ये मतलब है. अच्छा ठीक है, इसने ये बात की तो इसको तो ये जवाब ज़रूर देना चाहिए, हर हाल में इसको इसी तरह का ही जवाब देना चाहिए. और वो अपनी दुनिया में हम ऐसे खुदा हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी में लेने क्या आया, मैं तो अपनी दुनिया का खुदा हूँ. और फिर वो जो खुदा बने फिरते हैं, खुदाई के दावे करते फिरते हैं, फिर खुदा जब उनको बताता है ना आई एम हियर, तो बड़ा मजा आता है अल्लाह की कसमें. फिर वो जो खुदा बने फिरते हैं, खुदाई के दावे करते फिरते हैं, फिर खुदा जब

कॉल नहीं लूंगी 6:30 बजे से पहले. तो मैंने जैसे माइक ऑन किया फौरन कॉल आना शुरू होगी. प्लीज आप लोग इस चीज का ख्याल किया करें. फिर आप लोग इधर उधर दूसरे शोज में या कहीं और जाके दूसरे इवन सिटीज में उनके शोज में जाके भी कह रहे होते फ्ला आरजे के शो में मैंने कॉल की एंड वो कॉल नहीं पिक हुई. तो मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब मैं ऑन ईयर बात कर रही हूँ तो मैं कॉल तो यू नो लूं को ना.

भी सुन रही है। और महरीन तुम्हें हज उमरा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे, और मेरे लिए और बाकी सबके लिए भी दुआ करना, ठीक है। और दुआएं हैं जो हमें बचा के रखती हैं, वरना कसम से इंसानों के बस में हो ना तो वो ऐसे माइनर हार्ट अटैक दे दे के हम लोगों को तो मार डाले। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि रिस्क और मौत जो अल्लाह के हाथ में है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह के हाथ में, वरना हम इंसान कोई कसर छोड़ते नहीं हैं कि किसी को मारने में, वो इट इज़ नॉट अटेंशनली दैट गोइंग टू किल समवन या किसी को शूट कर देना, बट हम इमोशनली किसी को इतना ड्रेन कर देते हैं, इतना ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं कि वो बंदा मजबूर हो जाए कि यार जीना क्यों है। और ये सब काम करते हुए हम ज़रा भी नहीं सोचते कि रब की रज़ा तो सिर्फ इतनी सी थी कि बंदे का दिल ना दुखाया जाए, बंदे के दिल को तकलीफ ना जो है वो पहुंचाई जाए। तो इतनी सी बात जो है हम इंसानों को समझ नहीं आई, लेकिन हम बहुत बड़े फिलोसोफर होने का दावा करते रहते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, हमसे बढ़ के कौन है। अच्छा, एक और चीज़, एक तो आज का शो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम शो कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट जून में ये सेकंड शो है। फर्स्ट ऑफ आई थिंक सेकंड थर्ड जून को किया था, उसके बाद मुहर्रम की वजह से नहीं किया, 10 मुहर्रम तक वैसे आपको पता ट्रांसमिशन नहीं चल रही थी। तो आज तो जो लोग नाम लिखे बगैर मैसेज करेंगे, आज उन लोगों का मैसेज मैं पढ़ दूंगी, बट प्लीज़ ये प्रैक्टिस नहीं बनानी है। जुलाई के महीने में अगर आपने ये किया तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। 4471 पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेजेस शो में शामिल करेंगे। किसी ने मैसेज ये किया हुआ है कि आज बहुत दिनों के बाद आई हैं तो प्लीज़ सिर्फ बोलिएगा, गाने कोशिश कीजिए ना प्ले करें। मशवरा आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाय पानी का इंतजाम भी कीजिए फिर मशवरे के साथ साथ। यकीन था कि शिबा मलिक साहिबा आप नहीं आएंगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप आ गई। ऐसे कैसे पॉसिबल था कि नहीं आना? आप लोगों को पता है कि 10 मुहर्रम के बाद जो है वो ट्रांसमिशन जो थी चलनी थी, तो आना ही आना था, क्यों नहीं आना था? वैसे ये मशवरा दे रही हो या क्या कह रही हो? अच्छा जी, बतूल का मैसेज है, बहुत सारा प्यार बहुत सारी दुआएं शिबा, और बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इसी तरह चहकती रहो, आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारी दुआएं जा किधर रही हैं, लग क्यों नहीं रही मुझे? समरीन ने कॉल मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम शिबा, कैसी हो? और यार इतनी गर्मी है कि कहीं बाहर भी नहीं दिल करता जाने को, क्या करूं, ऑफिस में बैठी रहो। रानिया ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी है शिबा, दिल खुश हो गया है, यकीन मानो इतनी गर्मी में तुम्हारी आवाज़ सुन के ठंडक का एहसास हो रहा है। आई वाह वाह, ये वो मक्खन है जो इतनी गर्मी में पिघल रहा है, सो मक्खन मत लगाओ प्लीज प्लीज। ये वो वाला प्लीज है, अरबिक वाला भी और इंग्लिश वाला भी। शिबा ये अभी तुमने क्या बोला था गाने में, गाने के बाद? हाँ वो मैंने ये बोला था कि फरेब तो देख ही चुके हो, अब बस दिखाई मत देना।

पाँच पाँच के 20 मिनट हो चुके हैं और टेम्परेचर इस वक्त जो है 40 सेल्सियस है. और जिन जिन लोगों को लग रहा है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपकी गलत फहमी नहीं है, सच्ची मुची गर्मी बहुत ज़्यादा है. सो ट्राई टू बी कि सफोकेटेड प्लेसेस पे आप ना जाइए. अगर आपको बहुत ज़रूरत है कि आप रशी प्लेसेस पे जाएं, गेट अ वाटर बॉटल विद यू. और बाइक पे जा रहे हैं तो टॉवल गीला करके सर पे ज़रूर रखें, हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें. लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उनके साथ ब्रीदिंग का इशू है, तो वो हेलमेट पहन लें तो और भी अजाब पड़ना शुरू हो जाता है. तो फाइन की खैर है, हेलमेट साथ ज़रूर रखें. मैं ये नहीं कह रही हेलमेट ना पहने, हेलमेट साथ ज़रूर रखें. और अगर आपको रोका जाता है ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं, अगर

आपको रोक लेते हैं, तो उनको बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ सांस का मसला है, सांस का मसला है। तो इस वजह से जो है मैं वो हेलमेट नहीं पहन सकता, क्योंकि ये एक दो चीज़ें इस तरह की रिपोर्ट हुई हैं कि लोग कहते हैं कि जी हमें सांस का मसला है, हमें अस्थमा का प्रॉब्लम है, हम हेलमेट पहन लेते हैं तो हमारा बुरा हाल हो जाता है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। तो उनको बताएं, उनको एक्सप्लेन करें, वो इंसान ने समझ जानगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हर चीज़ को एक्सक्यूज़ ना बनाया करें प्लीज़। अच्छा जी, हियर वी गो। So stick around, stay tuned and keep listening. FM 101 Radio Pakistan Lahore.

अच्छा बतूल कह रही है कि या शिबा प्लीज कोई अच्छी सी मजे की बात बताओ ना. ओके ठीक है, आगे समझ. नई बातें बहुत सारी हैं और नई बात ये भी है कि हम लोगों ने ना तरीका वारदात बदल दिए हैं. लोगों को तकलीफ़ देने वाले, हर्ट करने वाली हम लोगों ने चीज़ें, जब लोगों को ये पता चल गया कि यार तरीका वारदात लोगों की समझ में आ गया. एक चोर था ना, उसने चोरी करने जाता था किसी के घर, दो चार बार गया, सेम तरीके से गया, उसी मोहल्ले में तीन चार उसने चोरियाँ की सेम तरीके से. लोगों को पता चल गया एक ही बंदा है कि चोरी कर रहा है यहाँ पर. फिर उसको समझ आई कि लोगों को मेरी तरीका वारदात समझ आ गई है. अब जो मैं लोग जो हैं चौकीदारी करना शुरू हो गए हैं, दरवाजे जो हैं वो बंद करते हैं और पूरी यू नो सही सिक्योरिटी वाला माहौल बन गया क्योंकि उनको मेरा तरीका वारदात समझ आ गया. उसने बोला मैं तरीका वारदात करूंगा चेंज. उसने अपना तरीका वारदात चेंज किया और फिर जब उसने चेंज किया तो फिर लोगों ने कहा ये तो कोई और ही चोर अब मोहल्ले में आना शुरू हो गया, ये वो चोर नहीं है. तो इसी तरह जो लोग किसी के दिल के साथ खेलते हैं, किसी के जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं, उन लोगों ने अब अपने तरीका वारदात जो है वो बदल लिया है. पहले लोगों को होता था कि यार किसी को पटाने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए और किसी का टाइम बर्बाद करने के लिए लोग सेम यू नो पैटर्न यूज़ करते थे. आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला यू नो. अब लोगों को समझ आ गई है कि यार ये तो झूठ है, फ्रेब है. अब उन्होंने क्या किया, तरीका वारदात ही बदल दिया है. वो मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोग यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देख सकते हैं कि मैं उसके ऊपर कौन सी डिटेल वीडियो बनाऊंगी. आप लोगों की फेसबुक की मैसेजेस हैं वो शामिल तो मैं करना चाह रही हूँ. फेसबुक के मैसेजेस, नेट को क्या मसला है, इट्स वेरी वेरी स्लो.

शकीर भाई साथ हैं, सुन रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद. थैंक यू सो वेरी मच, ट्यून अगेन और वक्त निकाला. हालांकि ये दिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने फुर्सत निकाली और जो है शो सुन रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू इन माई शो. और यहाँ पे मुझे किसी ने लस्सी की ऑफर की है, तो आप लस्सी पिए प्लीज तकीर भाई. नादर तेनू अल्लाह ही पूछे यानी के शाह जी के लिए ठीक है लस्सी ठीक है ते 80 की करिए सारे.

लोगों को ये लग रहा है ना कि गर्मी बहुत ज्यादा है और वो बार बार मुझसे ये पूछेंगे कि गर्मियां कैसी गुजर रही हैं, तो प्लीज आप सब लोगों के लिए भी गर्मी है, आप लोगों के लिए कोई बर्फ नहीं पड़ रही है जो मेरे से स्पेशल पूछा जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे सर्दी पसंद नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि गर्मी से मुझे बेतहाशा मोहब्बत है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक सर्दियाँ ऐसे मुझे लगता है कि बंदा बीमार बीमार सा हो जाता है, तो गर्मियाँ गुजर ही जाती हैं, रोद हो के ये कह कह के हाय गर्मी है, गर्मियाँ गुजर ही जाती हैं, बट सर्दी ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा हमारे साथ, और कहते हैं बुराइयों को इस वक्त छोड़ना मुश्किल हो जाता है जब ये आदत बन जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त बात की आपने। और जब लोगों की आदत बन जाती है ना, उस टाइम उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि आदत बन गई, जब अगला बंदा रियलाइज़ करा रहा होता है कि यार ये कितनी गंदी आदत है तुम्हारी, फिर बंदा कहता है अच्छा, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम नादर, क्या हाल चाल है, तुम ठीक हो? आज तो कह सकते हैं कि वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, यस आज कह सकते हो, मैं तो खुद कह रही हूँ। मैम कैसे गुजर रही हैं गर्मियाँ? वैसे मैम इतनी छुट्टियाँ करके क्या मिला आपको? जो मुझे मिला है ना वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं वो शेयर भी नहीं कर सकती। मैम लास्ट शो में आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी, अब कैसी तबीयत है? अभी तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खावर कह रहे हैं जब आपका शो हो, आपकी प्यारी सी आवाज़ हमारे साथ हो, तो लाहौर तो क्या बहावल नगर का भी सीन ऑन हो जाता है। आई वाह, ओ नाम तो बताना भूल गई कि मेरा नाम खावर है और आपको बड़े शौक से सुनता हूँ। सुनता इसलिए हूँ कि आप दिल से रिस्पेक्ट देती आ रही हैं मैम जी। शिवा मलिक थैंक यू सो वेरी मच खावर ऑफ कोर्स, और आप लोग प्यार से आते हो, दिल से आते हो और इतने सालों से मुझे सुन रहे हो, तो वो एक रिश्ता ऐसा बन जाता है खूबसूरत सा कि बंदा उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है, यू नो। और वैसे भी प्यार और इज्जत जो है वो फील हो जाती है, ये आपको बताना नहीं पड़ता कि आप किसी को इज्जत दे रहे हो या किसी को प्यार दे रहे हो, वो फील हो जाता है। और अगर आपको फील नहीं हो रहा ना तो फिर देयर इज़ नथिंग। इतने दिनों बाद शो हो रहा है, मैं तो सलाम करना ही भूल गया, वैसे तुम्हारा मैसेज आ गया था लिसनर्स को कि सब स्वीट लिसनर्स को मेरा सलाम, देख लो इजाज़ भाई मैंने आपको भी स्वीट बोल दिया है, खबरदार जो आज किसी ने किसी भी सज़ा का जिक्र किया। मैंने लास्ट में, क्योंकि वो मुहर्रम से पहले का शो था, तो मैंने कहा था कि चलो सज़ाएं नहीं देंगे, लेकिन हाँ जुलाई में हम ये ज़रूर स्टार्ट करेंगे कि जो रेगुलर शोज़ होंगे और जो रेगुलर लिसनर्स हैं वो अगर नहीं आएंगे तो फिर हम सज़ा वाला सिलसिला जो है वो ज़रूर शुरू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। अजीत इब्राहिम है हमारे साथ, इब्राहिम है डी जी खान से, ओके जी आपको भी खुश आमदीद, वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच, ओके। और वैसे मैम आपको क्या ऐसा लगता है कि एक बार गर्मियाँ बहुत कम कम हैं, एक दिन हो भी गर्मी तो अगले दिन मौसम अच्छा हो जाता है, किधर और ये किधर हो रहा है प्लीज़ बताओ? पिछले दो हफ्ते से लाहौर में गर्मी है, ठीक है, हाँ बारिश हुई थी सिर्फ आधे घंटे के लिए और वो भी 10 मुहर्रम पे, और उसके बाद कोई बारिश नहीं है, इस कदर गर्मी है, इस कदर सफोकेशन है, हवा में नमी का कोई तनासब नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि किधर हो रहा है ये काम, इतने लाहौर ही लगता है टूना हो गया। फिर इजाज़ है, अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, कैसी हैं आप और वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, लग रहा है कि बहुत साल हो गए हैं आपका शो सुने हुए और सब दोस्तों को सलाम, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि बहुत साल हो गए हैं, आधा साल गुजर गया है कसम से। 4471 वालों को कैसे 4471 पे कोई एसी वगैरह लगवा लें, या अभी सैलरी का वेट हो रहा है? नहीं, पिछले दिनों से मुझे याद है 3-4 महीने पहले इनके वो मसले मसाइल ठीक हो गए थे, शो में ही बताया था इन लोगों ने कि हो गया सब ठीक। शिवा जी गर्मी का क्या हाल है? आई वाह, मैंने पहले कहा है कि मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, मैं किस महकमे में लगी हुई हूँ, की है मेरा बिजली दे महकमे नाल कोई ताल्लुक है, मौसम किसके साथ मेरा ताल्लुक है? आराम यानी इजाज़ तुम इस्लामाबाद में हो ना, चलो ठीक है, अल्लाह करे कि वो इस्लामाबाद में वो जो शामें ठंडी हो जाती है ना, अब लाहौर जैसी पड़े ना गर्मी तो तब तुम्हें समझ आए, फिर हम भी पूछेंगे कि कैसी लग रही है गर्मी। अच्छा शिबा ये बताओ कि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी क्यों है, क्या खा रही हो आजकल, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मेरी आवाज़ जैसे पहली दफ़ा सुन रही हो, है ना, ऐसे लग रहा है, कम ऑन यार। मोहसिन रजा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह ब्यूटीफुल शो एंड मोहसिन फ्रॉम दुबई, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि ऑल द वे फ्रॉम दुबई हमारे साथ होने के लिए। रियाज भट्टी हैं शादरा से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। ओके और कौन है, ये कौन है? अच्छा जी दिल की गहराइयों से आपको क्या है,
दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए, पर किस बात की मुबारकबाद समझ नहीं आई। अकबर हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम जी, सारी खूबसूरत समातों को वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम अकबर। ओके हाँ, आरजे शिबा मलिक बल्ले बल्ले क्या बात है बल्ले बल्ले दही बल्ले, वो मुझे गाना याद आ गया तारिक ताफू का, ये लाहौर वाला, लाहौर लाहौर है वाला, वो वाला गाना, कहीं मैं प्ले ही ना कर दूँ उस गाने को अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है, खुश हो, ठीक हो और खैरियत से हो, और सुनाएं कैसे गुजर रही है ज़िंदगी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है करम अल्लाह का, आप बताइए आप कैसी हैं। हमेशा की तरह सुपर स्टार ऑफ द शो, अल्लाह आपको सलामत रखे शिबा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैं वही कहती रहती हूँ ना, दुआएँ हैं जिन्होंने अब तक संभाला हुआ है। ये कौन गर्मी गर्मी कर रहा है, गर्मी है तो नहीं है नादर, तुम सच बताओ कि तुम्हारी वाली साइड पे क्या बारिश हो रही है, मौसम सही है, और अगर मौसम सही है ना तो तुम बिल्कुल भी ना बताना कि सही है, हमें सड़ाने की कोशिश मत करना, ठीक है। जहाँ भी मौसम सही है कहीं भी प्लीज़ हमें सड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ लाहौर में पक्का वाला टूना जो है ना हो रखा है, तो इसलिए नहीं।

हूँ आपको सच्ची खबर, मुझे पता चल गया है तुम सुन रहे हो, तो इसीलिए तो तुमने मैसेज किया है। और वैसे भी क्या कहते हैं, खबर ने आज आफ्टरनून में मुझे मैसेज किया था और कहा था कि मैम बताएं कि शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल।

ज़ालिमों, गाने का वक्त नहीं हो गया, मुझे ऐसे लग रहा है गाने का वक्त हुआ चाहता है. सो अब हम एक ब्रेक लेंगे जिसको कहते हैं गाना ब्रेक. सो गाने की ब्रेक पे चलते हैं. ओके जी, लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा मलिक, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. सो कीप लिसनिंग.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

बैक। ओके जी, हाँ वो ज़रियोन ने खुद भी मैसेज कर दिया है कि हाँ जी मैं ज़रियोन, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे, और अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के शो में वापस आके। इट्स गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेलकम बैक शिबा मलिक, थैंक यू सो वेरी मच जी। अच्छा जी, नूर बख्श हमारे साथ हैं फ्रॉम नवाबशाह सिंध से, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप शो में हैं, थैंक यू सो वेरी मच। शायर केसवर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग शो, और मैं अली हुसैनी रेडियो लिसनर क्लब केसवर खरल फ्रॉम कोर्ट कबीरवाला। ओके जी, आपने भी अपना कोई लिसनर क्लब बना लिया, अब मेरी तरफ से आपकी तमाम खूबसूरत समातों को सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा आप लोगों ने भी बना लिया है, अच्छा यहाँ पे सारे लिसनर क्लब ही बनते जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। मैं अच्छा हूँ, चोरी चोरी पूछ लेता था कि मैम आपने आ जाना है कि नहीं शो करने। अच्छा, और वो लास्ट टाइम तो तुमने पूछा तो मैंने भी मैसेज देखा ही नहीं था। मैम जो मज़े की बात सुनना चाहते हैं उनसे 4471 के जाले उतरवाएं। तो ये पैगाम तुम खुद ही वहाँ पे दे दो। मैम मैंने छुट्टियाँ बहुत की हैं, सबसे पहले इजाज़ भाई से सज़ा का खाना था कहना था, इसलिए सबसे पहले उन्हें मक्खन लगाया, देखा उससे सज़ा का नहीं कहा, उसने सज़ा का नहीं कहा, मैंने देखा वो मैसेज। अच्छा उसके बाद कौन है, मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मैं साथ साथ हूँ, अभी साथ साथ हो, शो बहुत मिस किए हैं, बहावल नगर की शाम अच्छी हो जाती है इसलिए आप बहावल नगर आ जाइए। हैं सच्ची, कितने घंटे का सफ़र है लाहौर से। एक सॉन्ग है मैं बन के प्यार बेल, ये कौन सा गाना है? अच्छा चलो ठीक है, ओके प्ले करेंगे 6 बजे के बाद प्ले करेंगे। ओके नादिर ब्रो लस्सी वाला मक्खन लगा रहे हैं, शिबा जी आपको भी और मुझे भी, वो देखा उसने भी मक्खन वाली बात कर दी है। ओके बिनिश सिस अभी भी नहीं आई, अल्लाह खैर ही करे, मैं खुद बरीड हूँ कि पता नहीं क्या हुआ है, अब तो सचमुच अल्लाह खैर ही करे। खावर ब्रो कैसे हो, गुड टू सी यू, इजाज़ ने कहा है। ओके माशाल्लाह बहुत उमदा प्रोग्राम है। वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, आपको और आपकी टीम को और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। Oh, oh, oh.

हम एक और जो है गाना वो प्ले करेंगे और उसके बाद अच्छा 47 हो भी गए हैं. टाइम इज़ रनिंग, रियली टाइम इज़ रनिंग लाइक एनीथिंग. अच्छा जी, अब हम आसिम अज़हर का ये नया गाना है, अच्छा गाना है, ये प्ले करते हैं.

वेलकम बैक और FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, आरजे शिबा मलिक आपके साथ, साजिदा जहूर हैं, वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, आपको भी खुश आमदीद। और फैसलाबाद से आप हमारे साथ हैं, ओके, आप भी फैसलाबाद से हमारे साथ हैं, मज़र अली हैं, ओहो आज तो शो है, इसको देखो, यानी कि बस मज़र ट्यूसडे 5 to 7 अब शो होता है, ठीक है, वो जमाने गए जब हम वीकेंड पे शो करते थे संडे वाले दिन, ठीक है, तो अब हम ट्यूसडे को शो करते हैं। अच्छा जी, नादिर कह रहा है कि मैम इधर तो बहुत अच्छा है मौसम, 41 टेम्परेचर के साथ दिल के बहलाने को ये कहना ही बहुत अच्छा है कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है विद 41 टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे भी 41-42 ही है, ठीक है, सो वी आर ऑन अ सेम पेज, सेम पेज, सेम दुखती रखे हैं इस टाइम सबकी, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, यूके, कनाडा, लंदन और उसके साथ इटली, फ्रांस, सभी जगहों पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के हालात जब देख रहे हैं ना, तो मैं कह रही हूँ यार 37-34 टेम्परेचर के साथ उनका बुरा हाल हो रहा है, बिकॉज वो कंट्री जो है वो डिज़ाइन ही नहीं किए हुए उन लोगों ने ना गर्मी के हिसाब से, उन्होंने कहा ठंडक ही रहनी है हर टाइम, तो जो वहाँ पर आलम हो रहा है, ओ माई गॉड। खैर, आज आपको बताते चलें 30 जून जो है वो आज सोशल मीडिया का दिन है, ठीक है, तो बड़ी तबाहियाँ मचाई हुई हैं सोशल मीडिया ने, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी, सो डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट इट। आज हम जो भी बात करेंगे, सोशल मीडिया का डे है, सो हम एज टॉपिक भी इसी के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारी ज़िंदगी में बिगड़ी हैं, तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कितनी हमारी ज़िंदगी सरल हो गई है, आसान हो गई, और कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी जो है मुश्किल हो गई है डिजिटल दौर की वजह से, डिजिटल क्राइसिस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लाइव कर लेंगे 6:30। अच्छा जी, मैम आप जाके खट्टे चने खा लें, गर्मी कम लगेगी, मशवरा बहुत अच्छा है तुम्हारा, खट्टे चने खा लूँ गला ख़राब करा के बैठ जाऊँ, तुम ये चाहते हो कि अगले ट्यूसडे का शो मिस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद लगारी हैं हमारे साथ जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में शामिल आए हैं, टंडोला यार से हैं हमारे साथ, ओके, टंडू यार से हैं कुछ कुछ नाम ऐसे हैं पढ़ के वैसे ही हंसी आ जाती है। इजाज़ भाई बहुत अच्छा, आप बताओ जानी सब ठीक है, मैम लाहौर से 4 hours लगते हैं बहावल नगर आने में, ओके चलो ठीक है, किसी दिन फुर्सत में जब बैठेंगे और दिल होगा कि लाहौर से बोर ही हो गए हैं तो बहावल नगर ज़रूर आऊँगी, गाँव है तुम्हारा, गाँव है तो फिर मैं आऊँगी। क्योंकि मेरा गांव जाने का, गांव देखने का बहुत ज़्यादा दिल है, तो मैं चाहती हूँ कि गांव जो है वहाँ पे जाऊँ, कुछ ऐसा माहौल हो, यू नो, वो कच्चे घर देखने को मिले, वो खेत, वो मतलब वो दरख्त, फिर वो घर ऐसे हों जहाँ पे वैसा वाला माहौल हो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट, तो खबर तुम्हारा कुछ वैसा वाला है तो फिर तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर हम इस न्यूज़ को बिल्कुल बहुत बड़ी एक वर्ल्ड न्यूज़ बना देंगे कि शिबा मलिक जो है वो बहावल नगर गई है, उधर खावर से भी मुलाकात हुई है, ठीक है, तो वो हमारा एक बड़ा अच्छा फैन मूवमेंट भी हो जाएगा अगर गांव है तो। ऑलराइट, न्यूज़ ब्रेक है, सो क्या करें, गाना लगा दें आप लोगों के मैसेजेस, अभी तो 5 मिनट हैं, ओके 5 मिनट हैं, सो वी गोना गो फॉर, अच्छा चलो मैसेजेस ही शामिल कर लेते हैं। ज़रियोन ने मैसेज किया है और वो कह रहा है कि शिबा मलिक आपका बात करने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है, क्या आप आमतौर पर भी ऐसी बातें करती हैं? हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं आमतौर पर भी ऐसे ही बात करती हूँ, दिस इज़ माई नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, मैं इस तरह बात करती हूँ इसलिए मैं आरजे हूँ, मैं बना के बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे से होती नहीं है, और कितनी देर तक बना बना के बात कर लूँगी, इतने सालों से कर रही हूँ, इट्स लाइक 22-23 साल तो मुझे हो गए हैं, तो इतने सालों से कर रही हूँ तो अब कितनी कंसिस्टेंसी रख सकूँगी। तो इट इज़ सोशल मीडिया डे, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो कितनी आसान हो गई, कितनी बन गई, कितनी बिगड़ गई, और कितना ज़्यादा आपको लगता है कि यार अजाब ही डाल दिया है इसने, और कितना ज़्यादा आपको ये लगता है कि काश सोशल मीडिया ना ही होता, और ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे।
4471 वाले, अच्छा बतूल ने मैसेज किया है कि ये जो जाले उतारने के मशवरे दे रहे हैं इतनी गर्मी में, ये नेक काम नादर तुम क्यों नहीं कर देते, हमारी तरफ से भी और अल्लाह की तरफ से भी सवाब कमाओ। एहतशाम ने मैसेज किया है, शिवा मलिक आपको अगर हम कॉफी पे लेके जाना चाहें तो क्या आप आएंगी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी।

मदीना मुनव्वरा में जो है टेम्परेचर इस वक्त 44 है. महरीन हमें बता रही है, वो कह रही होटल रूम में जो है वो आपका शो सुन रही है, अभी स्टिल वो उधर ही है और वो कह रही है अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो मस्जिद नबवी जाना है. ओके ठीक है, तो बहुत सारी दुआएं हमारे लिए जो हैं, भर भर के दुआएं करना. ओके अच्छा, फिर उसके बाद ये कौन है, हाँ रानिया कह रही है कि शिबा खाना बना रही हूँ, करेले और दाल बनाने लगी हूँ, क्या तुम्हें पसंद है? हाँ ना, आई लव इट, अच्छे लगते हैं. अच्छा मुझे करेले एक तो सादा पसंद है या दाल के साथ, और अगर कीमे वाले तो वो भरे हुए पसंद है, अदरवाइज गोश्त के साथ करेले का कोई कॉम्बिनेशन है मुझे नहीं पसंद, भरे हुए कीमे के साथ मज़े के लगते हैं. हाय इस सीज़न में अभी तक खाए नहीं है मैंने. ओके नेट इतना ज़्यादा स्लो है, गर्मी की वजह से ना नेट भी लगता है ख़राब है, मौसम ख़राब होता है, बारिश हो तब भी हमारा नेट ख़राब हो जाता है, गर्मी है तब भी नेट ख़राब है, फिर उसके बाद जो है लाइट है और बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं, उनको तो हम गिनते ही नहीं है ना किसी गिनती में ही नहीं आती. ओके वैसे अल्लाह रहम करे सारे लोग जो हैं दुआ ज़रूर करें कि बिकॉज जोक्स असाइड ये जिस तरह गर्मी पड़ रही है, जिस तरह की हीट वेव्स आ रही हैं, वेरी वेरी डेंजरस. हम तो इसको यहाँ पे बर्दाश्त, हमारी ऐसी है, हमारा कंट्री ऐसे डिज़ाइन हुआ है, एशियन स्किन टाइप बॉडी ऐसी है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में जो है प्रॉपर लोगों की डेथ हो रही है गर्मी की वजह से. कहाँ पर मैं पढ़ रही थी, ऑलमोस्ट ओवर कुल मिला के जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में गर्मी है 150 लोग जो हैं ऑलरेडी जो हैं वो मर चुके हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से. तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मी कम हो, और वह ऐसे ही कम होगी कि अल्लाह ही करम करे बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए तो गर्मी कम होगी, वरना फुल टाइम गर्मी अपने गुस्से में भरी बैठी हुई है. ओके जी फरहान इकबाल आ गए हैं, पीस बी अपॉन यू शिबा, सेम टू यू फरहान, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग गुड, वेलकम टू द शो आपको भी. एंड कैसे मिजाज हैं आपके मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान आप हमारे साथ हैं. मैम कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई थी आप इतने दिन? नहीं, तुम इस साल नए आए हो, तुम्हें नहीं पता था, ठीक है. और हर साल जो है 10 मुहर्रम तक शोज नहीं होते हैं, तो उस बीच ट्यूजडे 2 होके चले गए हैं, तो इस वजह से शो नहीं हुआ था. साइमो के इसको देखो, ये तो मतलब आज सजा नहीं देनी, वरना ये इसको तो जरूर ही उठा के फेंकना था हमने शो से बाहर. सीरियसली सैम ने कहा सलाम अलैकुम शिबापी कैसी हैं, और सलाम टू ऑल लिसनर्स. आप गवाच क्यों जाती हो, पोस्ट भी नहीं आती अब? अच्छा इसको देखो, यानी के हद नहीं हो गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. अच्छा जी न्यूज़ ब्रेक है, चलते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं. स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

Once again, assalamu alaikum and good evening all of you. FM 101 Pakistan Lahore se RJ Shiba Malik aapke saath aur 6:04 ho chuke hain. 7 baje tak mera aur aapka saath rehne wala hai. Temperature is waqt hum jo equally chal rahe hain, bahut sari jagahon pe temperature bata ke na hame pareshan karne ki koshish mat kijiye, theek hai? It's 41 Celsius already here in Lahore. ओके सो 7 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा. ये आप सेड ऑलरेडी कि आज सोशल मीडिया का जो है वो डे है, इट इज़ 30th of June एंड सोशल मीडिया डे है, और हम लोग जो है उसी के बारे में बात करेंगे कि मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को कितना बिगाड़ा, कितना संवारा और कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज के शो में. ओके दैट इज़ गोइंग टू बी अ टॉपिक. सो अगर आप लोगों को ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ हम रील्स देखते रहते हैं, ठीक है, कुछ सीखा है तो वो भी बताइए, कुछ लोगों ने अपना नुकसान उठाया है वो भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा. मेरी तरफ से तो इस गर्मी मेरी तरफ तो इतनी गर्मी नहीं है, सिर्फ 44. ओ माई गॉड, मुल्तान में 44 है. ओ माई गॉड, मुल्तान भी बहुत गर्म है. सिंध, मुल्तान और कुछ एक दो और भी जगह हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे. सीरियसली हिम्मत है फिर आपकी. मैम देख लें, मैं जब जब छुट्टियाँ करके आता हूँ साइम को वापस लेके आता हूँ. ओके बहुत अच्छी बात है. मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है तुम लोग ना पूरा मंसूबा बांध के आते हो, ठीक है, इस वजह से तुम लोगों को लग रहा है कि एक दूसरे को ना इशारे इशारे में समझा के आते हो कि अच्छा मैं जाऊँगा तू भी आ जाना. नादर तुम मैम वेट गांव आप अभी नहीं जा सकती, गांव आप सिर्फ विनीश के साथ ही जा सकती. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर वो इस टाइम होती और ये वाला नक्शा जो उसने खींचना था, जो मैं कहा ना कि मैं भावलनगर चली जाऊं या किसी गांव में चली जाऊं, उसने ऐसा नक्शा खींचना था कि मैंने कहना था कि बस मेरी तौबा, मैं नहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जा रही. नादर तुम जाने ज़्यादा बहाने ना ढूंढो, मैं पहले ही शो में आ चुका हूँ. पहले कब, किसके शो में तुम आ चुके हो? हमारे शो में तो नहीं आए, काफ़ी टाइम के बाद ही आए हो, हमें तो नहीं पता. मैम हम जहाँ रहते हैं वो तो शहर है और साथ साथ में है गांव. पिक सेंड कर दूंगा, अगर मूड बन जाए तो सोच लीजिएगा. मैं देखूँगा, मैं दिखा दूँगा अपने खर्चे पे, दिखाऊंगा. क्या दिखाना है तुमने मुझे? गांव दिखाना है तुम्हारे अपने गांव में, वो साथ साथ गांव है तो तुमने मुझे उसमें क्या दिखाना है? इकबाल फरहान कह रहा है कि मुहर्रम के दो ट्यूसडे छोड़ के उससे पहले मैंने शो किया था, तुम आए नहीं थे, ठीक है. एहतशाम भाई मजहर अली को लेकर जाएं कॉफी के लिए, वो फ्री होता है ऐसे कामों के लिए. जी ओके. नूरबख्श कह रहा है कि मैं नवाब शाह सिंह से हूँ, गर्म तरीन सिटी है पाकिस्तान का और इसका है 52 सेल्सियस की गर्मी. अच्छा देखी है राइट नाउ जो है कितना टेम्परेचर है वो बताओ. 50 तक तो हमने भी देखा, मैंने तो 55 तक भी देखा है यूएई में. अच्छा मगर आपके शो में लोग 40 की गर्मी की इतनी बातें कर रहे हैं जैसे पहली बार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. तुम्हारे हिसाब से तो उनको ऐसे ही लग रहा है, और हमारे सबके हिसाब से यूके में जो पड़ रहा है 34-35 टेम्परेचर, वहाँ का आलम चेक करो. गाड़ियाँ टूट रही हैं, पिघल पिघल के गिर रही हैं, सिग्नल पिघल पिघल के गिर रहे हैं, वो इतनी क्या कहते हैं, सड़कें नरम हो रही हैं, मतलब क्या इतनी गर्मी है. अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस तरह डिजाइन हुआ है कि यहाँ पे जैसी भी गर्मी सर्दी पड़े करम अल्लाह का है कसम से. अच्छा शिबा तुम बताओ, सोशल मीडिया का टाइम है तो तुमने क्या किया? यार मुझे ना पर्सनली पिछले 2 हफ्ते पहले ना मेरा फोन खराब था. आई लिव विदाउट फोन 2 वीक्स, ठीक है, 2 हफ्ते तक मैं फोन के बगैर रही और उस बीच में मैं नोकिया फ़ोन के ऊपर थी, ठीक है, और मैं फिर नावल पढ़ रही थी, मैं बुक्स पढ़ रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, आई वाज रियली एंजॉयिंग दैट. पहले ऐसे ही होता था, हम लोग नावल्स पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, फ्री टाइम में मूवीज़ देखते थे, फैमिली के साथ रहते थे, बाहर चले जाते थे, वो हमारा अपना टाइम होता था. अब जो है अब ऐसा टाइम हो चुका है कि हम लोग जो हैं वो इतने अडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन के कि क्या ही बताऊँ. मैंने जब फ़ोन वापस लिया ना तो मैंने 2-4 घंटे यूज़ करने के बाद मैंने यार फिर वही रूटीन, वही रील्स देखते रहो, फ्लां करते रहो, एंड दिस इज़ रियली नॉट गुड. कोई इतना अच्छा भी नहीं, सोशल मीडिया के साथ मेरी दोस्ती कुछ ऐसी नहीं रही है. आई डोंट लाइक इट एट ऑल, क्योंकि लोग जो हैं
बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ख़राब हुई हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं, तबाह हुई हैं। लोग जो हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, लोगों ने तरीका वारदात जो है वो बदल लिए हैं। इसी तरह सोशल मीडिया, पहले लोग डायरेक्ट अप्रोच कर लेते थे, लेटर्स थे, फिर फ़ोन आ गए, फिर सोशल मीडिया के टाइम आ गया और लोग जो हैं उन्होंने तरीका वारदात बदल लिया। अब लोगों के साथ खेलने का, उनके जज्बात के साथ खेलने का इटसेल्फ ये एक प्लेटफॉर्म सा बन गया है। लोग जो हैं आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, आपकी रूटीन लोगों को पता होती है। आई रिमेंबर हाउ मेनी ईयर्स दैट 9-10 साल में बाहर रह के, मुझे नहीं याद है कि मैंने एक भी दिन वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग बैक, या मैं पाकिस्तान वापस आ रही थी या मैं जा रही थी, तो मैंने कभी भी पिक्चर लगाई है, पोस्ट किया है दैट आई एम ट्रैवलिंग बैक टू दुबई, आई एम कमिंग बैक टू पाकिस्तान। एक भी दिन मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं लगाई है। तो हमारी प्राइवेसी ख़राब हो गई है, हम बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि एक ओपन बुक की तरह हो गए हैं, और वो ओपन बुक हमारी फेवर में नहीं जा रही, वो हमारे अगेंस्ट जा रही, क्योंकि लोग उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। लोग वहाँ से चीज़ें देखते हैं, लोगों को पता चलता है कि अच्छा फलां बंदा ऐसा है, फलां बंदा ऐसा है, ओके, फिर वो माइंड गेम्स खेलते हैं, फिर वो उसी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं एंड दे लेट देम यू नो फॉल इन लव विद समबडी कि हाँ ठीक है जी आपका तरीका ये है, कि क्योंकि वो पूरी स्टडी करके आते हैं सोशल मीडिया से, आपको देख के आते हैं, पूरी तरह पढ़ के आते हैं, फिर उनको क्योंकि आपकी पोस्ट, आपकी पिक्चर्स, सारा कुछ विजिबल होता है, योर वे ऑफ लिविंग, वो सारा कुछ विजिबल होता है। सो इट्स वेरी इजी कि कोई बंदा अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो वो पीछे उसने अपना होमवर्क करके आया होता है कि हाँ जी मैंने ये काम ऐसे करना है। सो सम हाउ समवेयर ऑफ कोर्स इट इज लाइक बहुत बड़ा जिसका है ना रोल है डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइफ। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी इस वजह से तबाह कर चुके हैं। हर एक चीज़ इतनी ओपन हो गई है, जितनी ज़्यादा सीक्रेसी रहे, जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो आपकी रहे, जूम इन जो है वो रहे, उतना ही अच्छा है, मिनिमाइज हो जाएँ, बहुत सारी चीज़ों पर होना पड़ता है आपको। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, मैंने इतनी लंबी स्पीच दे दी है, ठीक है, बट दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स वॉट आई सपोज टू से एंड दैट्स माई व्यू कि हम कैसे देखते हैं इसको। अच्छा जी, हियर वी गो विद दिस सॉन्ग और फिर उसके बाद वापस आते हैं। स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। आरजे शिबा मलिक एंड लाहौर ऑन है।

Angeles, welcome back. और लाहौर ऑन है विदार्थ शिवा मलिक. ओके जी, उमर खां है. सिस्टर वेलकम टू द प्रोग्राम सुपर डुपर वॉइस. तमाम दोस्तों को सलाम. बहुत शुक्रिया जी, डीजी खां से आप हमारे साथ हैं. बतूल सिस, मैंने एसी का पहले इसलिए कहा था, पूछा था कि लगवा लिया है कि नहीं. जाले उतारने आऊँ तो एसी भी साथ उतार के ले जाऊँगा. कुछ आपका फ़ायदा, कुछ मेरा फ़ायदा. सुमैर है, सलाम अलैकुम, कैसी हो मिस गायब मलिक? नहीं गायब कहाँ यार, सारे लोगों को लगता है रूटीन भूली हुई है. गायब नहीं हुई थी, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था. प्लीज मुझे बार बार कहना बंद करो यार, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था. ठीक है मैम, फरहान सही कह रहा है, मुहर्रम से पहले वाला शो नहीं था क्योंकि उस टाइम में स्पीच थी जी, इस वजह से शो नहीं हुआ था. स्पीच की वजह से नहीं हुआ था क्योंकि वो बजट की वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वो घंटा डेढ़ उसमें निकल जाना था. तो फिर मैं आती भी तो क्या ही शो करती, इस वजह से फिर नहीं शो किया था. ठीक है. अच्छा जी मैम, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई आप इतने दिन? नहीं बिल्कुल भी नहीं, रास्ता नहीं भूल गई हूँ मैं, पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ आज. खैर एनीवेज, पता नहीं क्यों इब्रारुल हक का ये वाला गाना जो है, एवी पता नहीं, फॉर नो रीज़न आई वांटेड टू प्ले दैट. ठीक है, सो हियर वी गो विद इट.

अच्छा जी, जिन लोगों को, जिन्होंने गाने सुने, खबर वो कौन सा गाना था जो तुमने रिक्वेस्ट की थी वो बताना मुझे, कौन सा गाना था? टाइटल अच्छा लग रहा था, आई वाज ट्राइंग टू लुक बट मिला नहीं मुझे। अच्छा जी, मैम नवाब शाह सिंह से हो गया था। अच्छा जी, सुमेर का भी हो गया था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द बेस्ट, आपको भी। अच्छा जी, बतूल के कह रही है कि ये चोरी की आदत तुम्हारी बहुत पक्की होती जा रही है, मुझे लगता है कि बिनिश जाते जाते चोरियां सिखा गई है तुम्हें। कोई अच्छी बात ना करना, और अगर बिनिश शो सुन रही होगी ना तो वल्लाही शी इज गोना क्राई, उसका दिल चाह रहा होगा कि मैं उठा के कोई चीज जो है ना वो मारूं और इसका जो है ना वो मैं सर फाड़ दूं कि ये मेरे बारे में बात कैसे कर रही है। तो बिनिश, वो सुना है ना तुमने, अगर तुम शो नहीं सुन रही हो, शो मिस कर रही हो, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जरियोन कह रहे हैं कि शिबा मलिक आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं और जब भी आपसे पूछा गया है कि आप क्या खाती हैं तो आप बताती नहीं हैं। ले दस, मतलब क्या बातें करने के लिए कौन क्या खाता है, कुछ भी तो नहीं। मैं ऐसे बातें करती हूँ, मैं इसी तरह की मेरी आवाज़ है, इसलिए मैं रेडियो पाकिस्तान पे हूँ, वरना 22-23 साल में आवाज़ बना के कितनी सी बातें कर सकती थी। फैसला से दो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, तो कीर भाई आप भी सुन रहे हैं, फाइनली सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे पहले मुझे बताएं। क्योंकि मैं नाम लेके यहाँ पे ना, मैं अपने वर्ड्स जाया नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी आपने शायद सुना नहीं था तो मैंने आपको वेलकम किया था, तो आप अगर सुन रहे हैं तो फिर मुझे बताएं, ठीक है। तो कहीं पे है टेम्परेचर 44, कहीं पे है 41, कहीं पे है 40, कहीं पे है 50, और 50 वाले तो मतलब वो जो सिंध से हमारे साथ हैं, अल्लाह खैर ही करे, कसम है उनके साथ तो अल्लाह खैर ही करे। वो गाना कौन सा था, टाइटल कौन सा था, जरा बताना मुझे। एनीवेज, हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी जिंदगी जो है वो कितनी बनी है और कितनी जहन्नम बनी है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है सोशल मीडिया की वजह से अच्छी भी हुई है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब भी हुई है। आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने कैसा रोल प्ले किया है? हाँ देखा, समरीन कह रही है कि शिबा तुम 2 हफ्ते फ़ोन के बगैर कैसे रही? अभी तो मैंने बताया कि मैं फ़ोन के बगैर कैसे रही, मैं नॉवल पढ़ रही थी, फिर आई वॉज थिंकिंग, इमेजिनिंग माई टाइम जब फ़ोन नए नए स्टार्ट हुए थे, तो इसी तरह बटनों वाले फ़ोन होते थे, हम लोग कहानियाँ पढ़ते थे, हम लोग टीवी देखते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो उसी तरह मेरा वो टाइम जो है वो गुजर गया। और फिर जब फ़ोन हाथ में वापस आया तो वही रूटीन, हाय कसम है, बड़ी अजीब सी है यार ये, वापस क्यों नहीं हम अपने टाइम को लेके जा सकते, सब कुछ वापस क्यों नहीं सकता पहले जैसा? कितनी दफा दिल में यह ख्वाहिश आती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अच्छा जी, जरियोन कह रहे हैं कि शिबा आज कुछ शायरी हो जाए आपकी आवाज में। चलो सोचते हैं कि हमारी आवाज में कुछ शायरी अगर हो जाए तो। लेट मी थिंक अबाउट इट। एहतशाम कह रहा है कि नादर, मेरा तो ख्याल है कि मैं आपको भी साथ ले चलूं, आप लोग सारे तैयार रहें, क्योंकि शिबा मलिक को तो जब भी कहा है उन्होंने इनकार ही किया है। ओके, सच बताओ ये सॉन्ग लगाने का दिल क्यों कर रहा था, क्या गल करनी है छुपे रस्तों? नहीं सुमेर, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैम इब्राहिम हक का कोई दुखी सॉन्ग भी है, इनके दुखी सॉन्ग पे भी डांस ही निकलता होगा। नहीं, वो गाना नहीं तुमने सुना, वो माँ वाला, परदेसी वाला, फिर उसके बाद वो भी भीगा भीगा दिसंबर, और फिर उसके बाद नहीं मैं हासियां से यार गवाया, और दुखी गाने भी हैं, ऐसे तो ना करो। हाँ तो ये अभी क्योंकि वो पंजाबी गाने निकाले तो उसमें ये भी गाना आ गया, मैंने कहा व्हाई नॉट, मुझे लगा श्रीका नु अग लग दी सॉन्ग प्ले होने लगा है, तुम वो सुनना चाहते तो हम वो भी प्ले कर देते हैं। नादर टाइम, तुम्हें एसी की क्या ज़रूरत पड़ गई है, तुम तो वैसे भी पुठे पासे सोते हो, धूप में चारपाई सुठ लो। नादर तुमने ये बात साइम को क्यों बताई, तुम्हें पता तो है कि वो एक नंबर का खबरी है, सबको बता देगा। मैंने, मैम आपने बताया तो था आप
मैम आपने बताया तो था कि आप धोखे खाती हैं, मेरा मतलब है फल धोखे खाती हैं। बड़ी बातें आ गई हैं नादर तुम्हें। मैम बन के प्यार की बेल, मैं बन के प्यार की बेल, ये किसका गाना है? कौन सा गाना है? हम ब्रॉडकास्टर और मुझे नहीं पता।

0: अच्छा ओके खबर तुम्हें ये गानों का कैसे पता होता है? तुमने जब भी गाने की रिक्वेस्ट की है ना, ऐसे गाने आते हैं आगे। सो यार आई एम नॉट श्योर, सो आई एम नॉट गोना प्ले। ठीक है, ये गाना मैंने सुना नहीं है पहले, तो मैं इसको प्ले नहीं करूंगी। आप लोगों को पता है कि हम जो यहाँ से जितने भी गाने ऑन एयर करते हैं, हम उन गानों को ना पहले सुन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब वो सुनूंगी तो ही मैं प्ले करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। जी अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करने के लिए 042-111-0101 इज अ नंबर, यू कैन कॉल नाउ और आप लोग शामिल हो सकते हैं शो में। लेकिन अभी मेरा हाल है उससे पहले, अच्छा चलो ठीक है यार, लाइव कॉल्स ही ले लेते हैं। तो हम बात करें सोशल मीडिया की, हम बात करें कि सोशल मीडिया ने आपकी ज़िंदगी को कितना बनाया, कितना बिगाड़ा, आपको इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। सो क्योंकि सोशल मीडिया का डे है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हियर वी गो, लेट्स सी कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं परिसारे वाली, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ। इतने दिन के बाद कहाँ से आ गई है?
0: क्या हो रहा है?
1: दुबई गई हुई है। इतने दिन के बाद कहाँ से आई है? दुबई गई हुई थी।
0: अरे नहीं, दुआ करो चले जाएं, अभी तो नहीं, मुहर्रम में छुट्टियां नहीं होती, भूल गई आप भी।
1: वो छुट्टियां थी, वो इहतराम करना चाहिए इंशाल्लाह। कल आगे इहतराम करेंगे, 40 दिन तक इहतराम है हमारे पे वाजिब है। तो बाकी शो बड़ा अच्छा है, सोशल मीडिया के बारे में पूछ रहे हैं, पूछो तो ये सही है। तो आधा नहीं सही है, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये आई फेडिंग की वीक हो रही है, बाल उम्र से पहले वाइट हो रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं, टिकटॉक से बच्चे खराब भी हो रहे हैं। जो तरबियत है ना वो सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा खराब भी है। तो बाकी हम बड़ों के लिए सही है, क्योंकि घर बैठे ना वो सदा आ जाता है शादी का, आप आ जाए तो
0: अच्छा ओके।
1: बस ऐसा ना, डाकिया जैसे खत लेके आता है ना, तो वो भी इसी से मोबाइल से पता चल जाता है हर खबर का।
0: कुछ कंट्रीज में ये कानून जो है वो बना दिया गया है कि 18 इयर्स से अगर आप कम हैं तो आप कोई भी सोशल ऐप यूज नहीं कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड होगा तो आप कोई भी सोशल ऐप जो है वो यूज कर सकेंगे, और कहीं भी आप जाके ऑनलाइन नहीं कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कानून है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छी खासी यू नो गर्मा गर्मी भी हो गई थी इस बात के ऊपर कि वाई। इसीलिए ये कानून जो है पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हमारे तो कोई एज का वो है ही नहीं, यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो खाना खाते हुए भी जो हैं वो कार्टून देखने हैं तो माएँ जो हैं सामने मोबाइल रख देती हैं, और बच्चे भी ऐसे ढीठ हैं, वो भी रोते हैं फ़ोन के लिए, वो भी चीखे मार रहे होते हैं कि नहीं जी हमें भी चाहिए। सो इट इज़ अ सोशल मीडिया डे, तो आपकी ज़िंदगी को सोशल मीडिया ने कितना बनाया, कितना बिगाड़ा, आप लोग जो हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 042-111-0101। अच्छा तो कीर भाई, जब मैंने आपका 2 बार मेंशन किया तो आपने वो नहीं ना सुना? देख लो, मैं अब लिसनर कह रहे होंगे कि मैं भाई भाई कह रही हूं तो भाई साहब ने सुना ही नहीं। अच्छा जी, समरीन कह रही है कि यार शिबा, खट्टे चने वाला आइडिया वैसे अच्छा है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम खट्टे चने छोड़ो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, चलो तो सही हमारे साथ, तुम हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करती। तुमने देखा मैंने किसी का भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, गांव जाने वाला करना है, क्योंकि मेरा गांव जाने को दिल कर रहा है, गांव देखने का दिल है, तो इसीलिए मैंने खावर से पूछा है कि अगर तो बहावल नगर गाँव है तो मैं ज़रूर 4 घंटे का सफ़र करके ज़रूर जाऊँगी। जब नाम क्या
2: खत्म कहा,
0: जरियोन कह रहा है कि जब मेरा नाम लेती हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए आपसे कहा है कि प्लीज अपनी आवाज में कुछ शायरी भी सुनाइए, मैंने आज रिकॉर्ड करनी है, स्टेटस लगाना है, इसको देखो। अच्छा अगर स्टेटस लगाना है तो अपनी पसंद की शायरी भेज दो, वो पढ़ देती हूँ, ठीक है? तो फिर तुम स्टेटस लगा लो। अगर किसी को टीज करना है तो फिर तो ऐसी वाली भेजो, फिर मैं पढ़ूंगी, फिर स्टेटस लगाना और फिर जलाना सबको। फाइनली तो शब्बीर भाई ने कहा है कि मैंने सुन लिया है जब मैंने उनको मेंशन किया था, बड़ी मेहरबानी आपकी।
2: असली मजा ये है बेस्ट, फंकी नया देसी हो या हिप हॉप, गाने बजेंगे नॉन स्टॉप टिल द क्लॉक स्टॉप।
0: अच्छा जी, कुछ तो गड़बड़ हो है जो ये सॉन्ग लगा है इब्रार का। अरे यार, कौन सा गाना था मैंने इब्रार का लगा दिया है कि अच्छा ऐसा तेरी गल करनी डैडी नाल, माफ कर दो, पीछे ही पड़ जाते हो तुम लोग तो। और वो जो गाना तुम बता रहे हो ना कि मैं प्यार की बेल श्रीकांत अग लग दी, वो लगा दूं फिर दो, तुम लोगों को मेरे पे शक नहीं होगा ना, है ना।

0: well, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है सो हम लोग कॉल्स लेंगे गाने पे ही उसको फेड करना पड़ेगा. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: हम जिला गोरखी से मीरमा बात कर रहे हैं
0: जी. क्या हाल चाल है आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप सुना ठीक हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का.
1: यस क्या ठीक है?
0: जी जी ऑल ओके करम अल्लाह का. आप बताइए सब ठीक है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह. हम देखा अभी एक रिक्वेस्ट करते हैं
0: गाने की.
1: जी हाँ.
0: टाइम नहीं है अभी, टाइम नहीं है.
1: चलो
0: अगले हफ्ते से ही ठीक है. थैंक यू. अच्छा जी, जरियन कह रहा है कि बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा स्लोली अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा. अरे यार पीछे ही पड़ जाओ. अब मैं बता रही हूँ कि मैं वो दोबारा से पोएट्री करूंगी, उसको रिकॉर्ड कर लो ठीक है. यानी हद होगी तुम लोगों के स्टेटस के चक्कर में ना.

0: फरेब दे दिया बस अब सफाई मत देना, फरेब दे दिया बस अब सफाई मत देना, और अब कहीं दोबारा दिखाई मत देना। जो कर रहे हो मोहब्बत के नाम पे मेरे साथ, जो कर रहे हो मोहब्बत के नाम पे मेरे साथ, जब अपने साथ हुआ तो दुहाई मत देना। हेलो, ये कौन है जो मिस कॉलें मार रहे हैं? हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और लोग जो हैं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मिस कॉल्स मारने के लिए। इनके पास कोई और नंबर नहीं है आपके पास? हद है यार। अच्छा जी, स्टिल लिसनिंग नाउ गोइंग, ओके, थैंक यू सो वेरी मच महरीन। महरीन जो थी हमें मदीना मुनवरा से सुन रही थी, थैंक यू सो वेरी मच। दुआ भी करना, ठीक है, बहुत सारी दुआ करना। अच्छा जी, सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को बहुत बनाया है और बहुत सारा बिगाड़ा भी है, और आप अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें तो मुझे मज़ा आता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है टॉपिक के ऊपर लोग बात करें कि ऐसे होना चाहिए, नहीं। कम एंड शेयर योर ऑन एक्सपीरियंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन
1: है आप? क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक
1: ठाक बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए।
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब ओके।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा बोलती हैं।
0: शुक्रिया,
1: अच्छा लगता है हमें सुन के आपका शो। और सोशल मीडिया की बात वही है, अगर बंदा जिस तरफ जाए, जिस रास्ते पर चल पड़े, उस रास्ते का फिर ही पता चलता है। तो मेरा तो काफी एक्सपीरियंस हुआ उससे, मैंने बहुत, मुझे सबसे ज्यादा ये सहूलत हुई है कि सोशल मीडिया से कहीं भी जाना हो तो बंदे को, बंदा ऐप खोलता है, ऐप वो मैप्स पे, बंदा आराम से चला जाता है।
0: ओके,
1: ये, और फिर दूसरा बंदा कहीं भी बैठा है, कहीं से बात हो जाती है, तो कहीं देख लेता है किसी को। ये सब चीजों का बहुत है। और एक सबसे बड़ी बात है, माँ बाप दुआएं मांग के बेटा मांगते हैं, और बेटा सोशल मीडिया पे बेटी बन के लोगों को फेक आइडिया बना के तंग कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, माँ बाप दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें बेटा दे। हाँ जी,
0: चले
1: सब सुनने वालों को मेरा सलाम, बहुत अच्छा प्रोग्राम,
0: बहुत शुक्रिया,
1: सब सुनने वालों को मेरा सलाम।
0: यही बात है, बहुत सारी चीजें जो है, और अब मेरे गले की भी बस हो रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होने वाला हो जाता है ना साइन आउट का, तो वैसे वैसे जो है मेरे गले की बस हो रही है। फिर भी लोगों का जो है ना वो नहीं खत्म होता, लोग कहते हैं शिबा दो घंटे और प्रोग्राम कर लो, अल्लाह की कसम है, दिल करता चुप के कोई चीज मारो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: जी, क्या है?
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी शिबा बहन, क्या हाल है?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: मोहम्मद सदीक शेखपुरा से आज कर रहा हूँ
0: जी। क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने जो दो मिनट पहले एक शेर सुनाया ना
0: जी, जी
1: उससे रिलेटेड एक शेर सुनाने लगा हूँ।
0: जी जी बताइए।
1: कि हम आहम भी करते हैं तो मशहूर हो जाते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
0: क्या बात है, वाह जबरदस्त।
1: और मैं भी ठीक है
0: जी। जी सब ठीक ठाक है, करमल्ला का आपकी आवाज भी, अच्छा आई डोंट नो कि डिस्टॉर्शन हमारी साइड से है या आपकी साइड से है। मैं कह रही हूं आप ही की साइड पे है।
1: दो घंटे आपका प्रोग्राम होता है, अभी हम तो चाहते हैं चार घंटे होना चाहिए।
0: हाँ मैंने एक किए हुए चार चार घंटे के भी शोज।
1: अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह।
0: अच्छा जी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, ज़रियोन कह रहा है कि वाह कमाल कर दिया, थैंक यू सो वेरी मच शिबा, इट इज़ अ फेवर, ओके थैंक्स अ लॉट। एहतशाम ने कहा है कि आज का प्रोग्राम जो है ज़बरदस्त रहा, शिबा प्लीज़ पोइट्री वाला कोई शो करें, गानों के ऊपर आपकी पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो वेरी मच जी। ठीक है, करेंगे, ज़रूर करेंगे, उसके लिए मेरा अपना मूड जो है ना ख़राब होना बहुत ज़रूरी है।

बाबा प्लीज अपना इंट्रो दोबारा करेंगी, मैंने वो भी रिकॉर्ड करना है। ला वल्लाही हराम यानी बस करो, ठीक है? और नो मतलब जुमेरात नहीं है, ठीक है? ये अल्लाह दाता दरबार जाओ अब। सी वही बात कि हम उंगली पकड़ाएं तो लोग हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ाओ तो बाजू पकड़ लेते हैं, तो मतलब बस करो, अब स्टेटस पे इतना सा लग गया काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम शो जो है वो स्टार्ट से सुन लेना और इंट्रो जो है वो कर लेना, और नादर अगर तुमने शो रिकॉर्ड किया है ना तो तुमने जो है ना यूट्यूब पे भी नहीं डालना, हम नहीं चाहते जरे उनको इंट्रो मिले आज। अच्छा जी, लगता है कि भाई साहब फेक आईडी से डसे हुए हैं। कौन कौन नहीं डसा हुआ, बहुत सारे लोग हैं डसे हुए हैं। सीरियसली फेसबुक के ऊपर तो बात करते हुए बहुत ही डर लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये तो मैं शुक्र करती हूँ कि यार बहुत सारी चीज़ों में हम केयरफुल हैं कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीब सी हो गई है। केयरफुल होने के बावजूद भी जो है लोग पता नहीं कैसे आपके दिमाग के अंदर घुस के किसी कीड़े की तरह जो है वो आपको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। सीरियसली

0: शो खत्म होने वाला है. लास्ट में हम लोग फेसबुक के मैसेजेस देख लेते हैं. ओके, एहतशाम कह रहा है कि शिबा इट वाज ऑन अ सीरियस नोट, कैन यू प्लीज कम कॉफी के लिए आ सकती हैं. ओके, तो मैंने पहले भी बोला था नहीं और अब भी बोल रही हूँ नहीं. लेट्स सी लास्ट कॉलर कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जी बाजी शिबा. शब्बीर हुसैन इधर जोड़े पुल से अर्ज कर रहा हूँ. आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है.
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी.
1: आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी किस दिन सुनाऊंगा, आज टाइम थोड़ा है. दूसरा ये कि आप ना अतौला इसा करीब का सुनाना, ये सब माया है, ये की सुनाना इंशाल्लाह अगली बार.
0: अच्छा चलो ठीक है, ओके फिर टाइम से आना. ओके अल्लाह हाफिज़
1: जी. ठीक है.
0: सो हम लोग बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, कि बहुत सारी जिंदगियां जो हैं तबाह बर्बाद हुई हैं और बहुत सारी जिंदगियां बनी भी हैं. ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ों में भी यूज़ किया गया है और कुछ बुरी चीज़ों में भी लोगों ने इसको यूज़ किया है. बात यह है कि हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए चीज़ों को पिक करते हैं और उसी तरह उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसी तरह उसको यूटिलाइज़ करते हैं और वैसे ही यूज़ करते हैं. नो मैटर कि अगले बंदे की ज़िंदगी जो है वो उस पर कैसा इफेक्ट होगा, कैसा नहीं इफेक्ट होगा. और जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अब जो है हमने अपना तरीका वारदात जो है वो बदल दिया है. समरीन अल्लाह खरबे थे क्या नहीं? नहीं, वो तरीका वारदात ये नहीं था, वो तरीका वारदात डिफरेंट था. पहले लोग सीधा आगे बोल देते थे ना कि हाँ जी हम आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं. ठीक है, और लोग थोड़ा टाइम लेते थे. अब लोग कहते हैं हम सोशल मीडिया से आपको स्टडी करके आए हैं. अब ये आप वो, फिर आप कहते हैं यार क्यों सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें जो है वो डाली थी हमने. अच्छा मैंने वो गाना प्ले कर दिया प्रारुल हक का, सारे मेरे पीछे किस बात से पड़ गए हैं कि डैडी नाल गल करनी. ओहो माफ करो यार, डैडा जिंदा भी नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, मैम बतूल सिस्टर कितना नेगेटिव सोचती हैं, ये सोच रही है कि बिनिश ने मुझे चोरी करना सिखाया है. पॉजिटिव भी सोच सकती है कि क्या वो मुझे इतनी हिम्मत दे गई है कि जो काम भी कर रहा हूँ बता के करूँ. जरियोन ने मैसेज किया है, जरियोन कह रहे हैं अच्छा ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, हा हा हा आप तो गुस्सा कर गई हैं. शिबा वैसे मैं भी एक गांव में रहता हूं, अगर आप कहें तो आप हमारे गांव को भी विजिट कर सकती हैं. कौन सा गांव, ये क्या नाम है, बहावल नगर जैसा कुछ लिखा हुआ है. तुम्हारे आज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रहे हैं, माफ करो. अच्छा जी, खबर क्या कह रहा है कि गाना लगाओ. मैं अच्छा नागन डांस कर रहा मैं ग्रुप भी में गया था तो क्या हुआ था. मैं मुझे स्टेटस लगाना है पोइट्री का. नादर वो जो पोइट्री हो गई है खलास, माफ़ करो मुझे. ठीक है, पीछे पड़ गए हो. अच्छा जी, हेलो मैम, सॉरी फॉर लेट, अभी ऑफिस से आया हूँ, आपका शो सुन रहा हूँ. वकास ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद. इतनी सैड पोइट्री खैर तो है, इतना दुखी होना भी अच्छा नहीं होता. ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू मैसेज करने के लिए. तो आप ऐसा करते, आप कोई 5-10 मिनट और लेट हो जाते तो हम तो साइन आउट करने ही वाले थे. नादर है जरियोन भाई, इधर किसी को किसी की खुशी की नहीं पड़ी, आप अपनी पोइट्री सेंड करें. ये लोग तो चाहते हैं कि आपकी पोइट्री शामिल ना हो. मैं फसादी, मैम फसादी रूह जाग रही है थोड़ी थोड़ी. थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छी खासी. ओके, जितनी दफ़ा शेर हो गया है शक होने लगा है कि तुम सफाई वाले तो नहीं हो नादर. शिबा माफ़ कर दो यार, वो जो एक दफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे धोखा खाया था ना, उसके बाद यकीन मानो मैंने दोबारा फेसबुक बनाई ही नहीं है. अब दूसरी चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ लेकिन फेसबुक नहीं, और वहाँ पे भी किसी के साथ चैट नहीं कभी की है. बहुत अच्छा किया, करनी भी नहीं चाहिए. काम के पर्पज़ के लिए कभी यूज़ हो जाए, जैसे मैं काम के लिए यूज़ कर लेती हूँ. एक दो दफ़ा मैंने पर्सनली उसको यूज़ कर लिया और उसका नुकसान ही उठाया है, और बड़ा बुरा उठाया है. जो फेक आईडी से डसे हुए हैं उन लोगों के लिए भी अल्लाह रहम ही करे. ठीक है, और अच्छा ठीक है जरियोन, नेक्स्ट टाइम. ओके, तो वो जो तुमने पोइट्री सेंड की है उसको नेक्स्ट टाइम हम जो है शो में शामिल करेंगे. कोशिश करेंगे कि पोइट्री वाला कोई शो रखें, 1 घंटे का रखेंगे जिसमें हम सिर्फ पोइट्री करेंगे, और 2-3 गानों के ऊपर मैं पोइट्री कर दूंगी. फिर तुम उनको रिकॉर्ड करना और बदल बदल के स्टेटस लगाना और जलाना जिसको जलाना. ठीक है, मेक श्योर मुझे गालियाँ ना पड़े, मैं फिर कह रही हूँ.

0: Alright जी, और विकास इज सेइंग कि लगता है कि सब दुखी हैं। मैं सोशल मीडिया पे तो आप भी हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस दैट जब मैंने उसको पर्सनली यूज किया है तो मैंने धोखा ही खाया है और बड़ी बुरी तरह खाया है। अब क्या करें, मजदूर आदमी गरीब बंदे ऑफिस से आना तब ही सुन सकते हैं ना, क्या बात है। गुड, ग्रेट, ओके। और फिर उसके बाद लगता है कि भाई साहब ओके हो गया था, वाह सब दुखी ही लग रहे हैं आज। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पोएट्री स्टार्ट में कर दी है और लोग पीछे पड़ गए हैं कि उन्होंने स्टेटस लगाना है, कहीं ज़रियोन ने स्टेटस लगाना था, उसके चक्कर में हमने एक ही शेयर को ना दो तीन बार उस शेयर की ना आहोई करती थी। एनीवेज, नाउ साइनिंग ऑफ, अब जाने का वक्त हो गया है। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी प्रॉबेबली इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे। Till then, do take care of yourself and your loved ones and stay away. I'm going to take you to the news. उसकी तरफ ही जाएंगे और तो कुछ भी नहीं हो सकता, गाना तो लग नहीं सकता। और वो जिसने गाने की रिक्वेस्ट की थी ना, कौन सा गाना था, मुंह काबे नू करके, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो सरमत का गाना है। YouTube जिंदाबाद, जाओ और हज़ार बार वो गाना सुनो, ठीक है। अच्छा जी, सो एवरी वन, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक की अपनी आई वुड से, जब आप किसी का मिस यूज़ कर रहे हैं, किसी की आईडी का मिस यूज़ कर रहे हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन का मिस यूज़ कर रहे हैं, गेट रेडी फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपने लिए जो है वो तैयार रहें, क्योंकि एक चीज़ मुझे हमेशा से अच्छी लगती है धोखे की, कि जिसने दिया होता है ना वो घूम फिर के उसके पास ही आता है और वो कहता है कि मालिक मैं हाजिर हूँ, मैं इधर से गया था। तो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें, और हर एक बात की, हर एक प्लेटफॉर्म की दो अच्छाई और बुराई आपके सामने होती है। इट इज़ यू, कि आपकी डेविल साइड जो है वो वहाँ पे जा रही है या आपकी एंजल साइड जो है वो उसको पिक कर रही है। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़ एंड हॉट्स ऑफ लट्स।
1: शाम के 7 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमरान नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुआवजे के तकद्दस की हर कीमत पर तहफ्फुज़ के लिए पाकिस्तान का आज़म जाहिर किया है। पाकिस्तान काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की नशिस्त संभाल ली है। कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहमा मीरवाइज वर फारूक ने तनाज़ कश्मीर समेत भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मसाइल के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। फीफा मरहले में आज मॉन्ट्रियल में मराकिश ने नीदरलैंड को पेनल्टीज पर 3-2 से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वादे के तकद्दस की हर कीमत
2: की बात, तब नहीं होगा स्ट्रेस। एफएम की बीट
3: सुनते रहिए, एफएम 101 101 101।

0: चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

आपको बड़ा हैवी किस्म का जुर्माना होगा। और ये हैवी किस्म का, ये जो हैवी किस्म का जुर्माना होता है ना, ये उसके बाद जब आता है ना आपके मैसेज आता है कि जी जनाब आपको अच्छा, जब ये हैवी किस्म का जुर्माना होता है ना उसके बाद पता चलता है कि आप कहते हैं कि यार ये क्या इतना ज़्यादा फाइन, इतने ज़्यादा जुर्माने। और जितने भी गाड़ी में बैठे इस वक्त सुन रहे हैं, दे कैन बेटर इमेजिन कि आपकी गाड़ी को कितने कितने फ़ाइन्स आते हैं, और उसकी वजह सिर्फ आप खुद होते हैं, कोई नहीं होता। क्योंकि हम वायलेट करते हैं, हम वायलेशन करते हैं, हम सील बेल्ट नहीं पहनते, हम सिग्नल की क्रॉस कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अक्सर अवकात जो है सेकेंड लेन या थर्ड लेन से हम जाके कोशिश कर रहे होते हैं कि जी अपनी गाड़ी को जो है यू टर्न मारें। मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ अक्सर लोगों को देखो थर्ड लेन में होते हैं, थर्ड लेन से वापस वो यू टर्न कर रहे होते हैं। दैट इज़ बाय लॉ जो है ना वो वायलेशन, और वैसे भी बड़ा अनकम्फर्टेबल सी बात है कि आप थर्ड लेन में आएंगे, देखें दो लेन्स वाले लोगों को आप डिस्टर्ब करेंगे, एक और दो लेन वाले लोगों को आप डिस्टर्ब करेंगे। आप थर्ड लेन में से यू टर्न जब करेंगे तो कितने लोग उससे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा जब आप रोड में किसी एंटर होते हैं, आप एक लेट सपोज अगर आप किनाल रोड से आ रहे हैं और आपने माल रोड पर चढ़ना है, सो माल रोड पर अक्सर लोग क्या कहते हैं, फ़ौरन से लेफ़्ट मुड़ते हैं, क्योंकि सिग्नल लेफ़्ट मुड़ने वालों के लिए फ्री होता है, वो सिग्नल फ्री है रोड, वो क्या होता है कि लोग तेज़ी से अंदर घुस जाते हैं। अब उस साइड से अगर सिग्नल खुला है तो दूसरी साइड से, यानी कि फोर्ट्रेस की तरफ से अगर सिग्नल खुला है, तो वो क्या होता है कि वो सीधा जाके जनाब वो गाड़ियाँ जनाब आपस में लग जाती हैं ना। मैंने आई बिन नोटिस सो मैनी टाइम, ऐसा मैंने देखा है और मैंने फ़ील किया है कि लोग जो है ना इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते, और वो गाड़ी को सीधा हाईवे पे चढ़ा देते हैं। हाईवे से मुराद ये है कि मेन शाहराह के ऊपर जब आप दो लिंक्ड रोड होती हैं। सो वट यू हैव टू डू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज सेड, और मैं पढ़ा के बता के थक गया हूँ कितने सालों से, आप लोगों को बता के मैं थक गया हूँ, यकीन जाने मैं थक चुका हूँ, कि जब भी आप किसी रोड पे एंटर हों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप माल रोड से जब आप किनाल से जब माल रोड पे टच करेंगे या इस तरह किसी रोड को आप टच करेंगे, आपने पहले तो आस्था करनी है गाड़ी, आपने देखना है कि राइट साइड से जिस साइड से ट्रैफिक का फ्लो उधर से गाड़ियाँ तो नहीं आ रही, और अगर आ रही हैं तो आपने आस्था कर लेना, और फिर उसके बाद आपने अपने ट्रैक से ही लेफ़्ट मुड़ना है, यानी कि लेफ़्ट आराम से आपने लेफ़्ट मुड़ना है, और आपने शोल्डर चेक फिर अगेन करना है कि कोई ऐसी गाड़ी जो कि एकदम से आपको नज़र ना आए, जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट्स, मैं अक्सर इसको समझाता भी हूँ, ब्लाइंड स्पॉट्स वो होते हैं जिसमें आपको राइट मिरर पे भी नज़र नहीं आता, आपके सेंटर मिरर पे भी नज़र नहीं आता, उसको ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। सो उन ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपना शोल्डर चेक करना है, दिस इज़ लाइक इंटरनेशनल लॉ है कि आपने शोल्डर चेक करना है। वट इज़ इट कॉल्ड, कि शोल्डर चेक होता है कि जब भी आप ओवरटेक करने लगें, जब भी आप किसी नई रोड के ऊपर लिंक करने लगें, तो आपने अपनी जो गर्दन है ना उसको घुमाना है, और अपने शोल्डर से ऊपर जो पिछला मिरर है उस पर एकदम आपने देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। सो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ये आपको अक्सर साइड मिरर पे नज़र नहीं आते। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बहुत ट्रेंड है कि पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में लोग ये करते हैं कि जी एकदम से गाड़ी या मोटर बाइक या साइकिल जो है ना साथ लगा देते हैं। और बारहा मैंने भी देखा है और आप लोगों को भी नोटिस किया होगा कि मोटर बाइक पे खास तौर पे जो होते हैं ना, मोटरसाइकिल पे लोग क्या करते हैं, वो एक बंदे ने राइट मुड़ना है और वो अगेन उसके एक्सट्रीम उसके साथ जुड़े होते हैं राइट मुड़ने वाले, सो उसमें एट द एंड आपने देखा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, मसला हो जाता है। सो इसीलिए प्लीज़ गाइस, अपनी गाड़ी चलाइए, अपनी गाड़ी समझ के चलाइए, थोड़ा सा एहतियात कीजिए, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, एक दूसरे का ख्याल करें जब आप रोड पे हो, रोड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ साथ आपने एक अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। रोड सेफ्टी से मुराद है कि अपनी सेफ्टी, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अच्छी गाड़ी चलाएँ, स्मूथ ड्राइविंग करें, कोई जल्दी नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, भागम दौड़ नहीं है, आपको सिर्फ एक या दो या चार मिनट का फ़र्क पड़ेगा अगर आप जितनी मर्ज़ी तेज़ गाड़ी चला लें। आपने अपने ऑफिस से घर जाना है, आपने घर से किसी काम पे जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है, आप टाइम नोट कर लें, आज मेरी बात नोट कर लें, आप जितनी मर्ज़ी तेज़ गाड़ी चला लें आपको 5 मिनट 8 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा फिर, ऐसा चला लेना की हो गया भाई, अभी भी कह रहा हूँ ऐसा चला लें। सो जनाब 04-2111-0101 इज़ अ डायलिंग नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दो अदद बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, अब्दुल वहाब और मोहम्मद असद साहब, पता नहीं किन सोचों में गुम है, किन ख्यालों में गुम है, यानी आप भी गैस के इंतज़ार में। हो जाता है भाई पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेट हो जाता है इंसान, सो मसले हो जाते हैं। एनीवेज जनाब आप भी हमारे साथ रह सकते हैं 04-2111

1000101। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है ये आपने बताना है। मैंने तकरीबन कुछ 5-7 साल के बाद इस बैकग्राउंड म्यूजिक को चलाया। सियालकोट FM जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, सो मैं ऐसे ही बैठा हुआ, हम कुछ दोस्त बैठे शो कर रहे थे, तो उन्होंने जनाब अचानक से ये बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया। उनके सिस्टम में आज भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई ये मुझे दो जल्दी से मुझे दो। तो हम जनाब अपना बैकग्राउंड पुराना कोई बैक इन लाइक 2010 में ये चलाता था मैं। हाय, हम कितने पुराने हैं ना।

वेल जनाब, आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग जो वायलेशन करते हैं वो क्यों करते हैं, उसकी क्या रीज़न है, कौन सी वजह जो आप लोगों के फाइन्स आ जाते हैं, कौन सी वजह कि आप रिंग रोड के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर जो आप लोगों की गलतियां होती हैं और जो जुर्माने होते हैं उसकी क्या वजह होती है, कौन से ऐसे जो असूल हैं जिनको हम नहीं अपनाते और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका आज तक हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा आई एम श्योर, आप लोग जो गाड़ी चलाने वाले हैं कि रिंग रोड पर जब आप आते हैं और उस पर ट्रैफिक की क्या कवानीन है, किस तरह कवानीन की पाबंदी करनी है, किस तरह गाड़ी चलानी है, क्या एहतियातें हैं, और अगर आपने ओवर स्पीडिंग किया तो उस हवाले से, सो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे आज के शो में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हो गए, उनसे भी हम बात करेंगे। सो जनाब, मेहमान हमारे आ चुके हैं, बट अभी राइट नो एक ट्रैक के जानी पड़ेंगे, उसके बाद हम दोबारा लॉन्च किए आएंगे। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान FM 101। मुझे कहते हैं फरहान खान एंड दिस ट्रैक इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। मैं अपने जो गेस्ट हैं आज के उनको वेलकम करता हूँ और अभी हम बढ़ते हैं एक ट्रैक की जानी, फिर उसके बाद लौट के आएंगे। हमारे साथ रहिए।

0: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थीं और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आबादी की मंसूबा बंदी को कौमी तरक्की और माशी इस्तेहकाम के साथ हम आहंग करने पर जोर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध तास माहिदा ज़ेरे इल्तवा रखने के भारत के एक तरफा ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर मज़हबी अमूर ने मज़हबी रवादारी के फ़रोग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी तआवुन जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज ओवल में ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल FM 101।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल FM

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101 The sound of new millennium.
3: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल।

FM 101, the sound of new millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium.

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

सोने का तुझे जोम है ना, ये सोने से निकलना बहुत जरूरी है। बाज़ुकात हमारी बहुत सारी अच्छाइयां किसी एक खास तरह की खामी के अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाती हैं, अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं, खत्म हो जाती हैं। वो एक खामी, वो एक तकलीफदेह खामी इंसान को बदल कर रख देती है। बाज़ुकात इंसान उस खामी को ये लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है, ये कहने की कोशिश करता है कि दरअसल जमाने के साथ इसी तरह से चलना पड़ता है, दरअसल जमाने के साथ इसी तरह से गुजरना पड़ता है। अब वो लोग क्या करें जो अंदर और बाहर से बिल्कुल एक जैसे हों, वो लोग क्या करें जो अंदर से भी सफेद हों, शफाफ हों, जिनके अंदर जरा भी मैल ना हो, वो लोग क्या करें जो बाहर भी बिल्कुल उसी तरह की कैफियत को नजर दिखाते हों, उसी तरह से नजर आते हों। गला थोड़ा सा खराब है क्योंकि अभी अभी मैं खांसी की वो शिद्दत वाली जो खांसी होती है ना, उससे अभी अभी बाहर निकला हूं। अभी अभी गला थोड़ा सा बेहतर हुआ है, इसलिए आज कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है मेरे पास, आज पानी की एक बॉटल है, साथ में एक बिस्किट है, क्योंकि कुछ खाया नहीं है तो दिल चाह रहा है कि कुछ साथ में होना चाहिए। काश के चाय का एक मग हो जाता, लेकिन इस कमरे के अंदर, और यस ये भी कहना एक अजीब सा एहसास है कि इस कमरे में और मेरे कमरे के आसपास जितने भी कमरे हैं उनमें मैं सिर्फ तन्हा हूँ। और अगर बात की जाए इस कमरे की तो बहुत से लोग ये जानते हैं कि इस समय कैसा माहौल होगा। बिल्कुल उसी तरह का माहौल है, सब बरकी कमकमे यानी रोशनियां गुल कर दी गई हैं, रोशनी बिल्कुल नहीं है दो मॉनिटर्स की रोशनियों के सिवा। ये जो राइट साइड पे मॉनिटर है इस पे मेरा BGM चल रहा है, लेफ्ट साइड पे जो मॉनिटर है इस पे मेरा जो नेक्स्ट ट्रैक है या पहला ट्रैक मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है वो क्यों किया हुआ है। इस तरफ एक छोटी सी LCD है जिस पे कोई TV चैनल चल रहा है, हाँ PTV चल रहा है। बस दिल चाह रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी अभी ये इंस्टॉल किया गया है तो डर लगता है कि कहीं दोबारा ऑन ही ना हो। हाँ फिर क्या करेंगे। कभी कभी इसी डर की वजह से हम कुछ लोगों से अपने दिल की बातें नहीं कह पाते कि ये जो दोस्ती है ये भी जाती रहेगी, ये जो कुछ देर के लिए एक दूसरे से मुलाकात का दौरानिया है ये खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। बास सफर ऐसे ही होते हैं जिनमें इंसान जमीन पर चलता है मगर हकीकत में अपने ही अंदर उतर रहा होता है। बाज फासले ऐसे ही होते हैं जो मीलों में नहीं दिल की धड़कनों में नापे जाते हैं। बहरहाल रात की खामोशी है और इस खामोशी के अंदर अंदर की वो जो आवाज कहीं बहुत ज्यादा नीचे दब गई होती है, मधम हो चुकी होती है, या फिर उसकी आवाज हो आना सिरे से बंद ही हो चुका होता है, वो बिल्कुल वाजे वाजे आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी तरह से बाकी तमाम शोर को पीछे करती हुई, दूसरी गैर जरूरी आवाजों को पीछे करती हुई वो ऊपर की जानिब सफर करती है, समातों में गूंजने लगती है। रात की तन्हाई कुछ इस तरह का असर करती है, लेकिन ये असर हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोग इस समय सोने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग इस समय ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए स्टीयरिंग को थामे हुए 80 की स्पीड को बरकरार रखते हुए या तो मोटरवे पे या फिर लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, क्वेटा, पिशावर, हैदराबाद, सियालकोट, सरगोदा या फिर दुनिया में FM 101 की फ्रीक्वेंसी पे जहाँ जहाँ पे सुना जा रहा है ड्राइविंग करते हुए जा रहे होंगे, उनसे बस यही कहना है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल इसलिए कीजिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, ना कि आपको चलान से बचाती है।

और अगर कोई तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा है आपके दाएं या बाएं तरफ से, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज उसे जाने दीजिएगा। पता नहीं उसको कितनी जल्दी होगी या क्या ऐसा हुआ होगा कि वो जल्दी बस पहुंचना चाहता है अपनी मंजिल पर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपके प्यारे आपके इंतजार में, आपसे मोहब्बत करने वाले आपके इंतजार में आंखें बिछाए हुए घर के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से शायद उसका भी कोई इंतजार कर रहा हो जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जाने दीजिएगा। ये जो गुस्सा है ना, ये इंसान को बाज़ औकात इस दुनिया से बेदखल कर देता है। मेरे सामने की मिसाल है, अभी बहुत ताजा मिसाल है। बहुत गुस्सा इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। और आजकल तो हमें छोटी छोटी बातों पे आने लगा है कि अभी तक तुमने पानी का ग्लास क्यों नहीं दिया, अभी तक मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए, अभी तक खाना क्यों नहीं बना, खाने में नमक नहीं है, नमक बहुत तेज है, ये परफ्यूम बहुत तंग कर रही है मुझे, ये कपड़े मुझे तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। हर तरह की बात है, तरह तरह की बात है। तुमने काम अपना अच्छा नहीं किया, तुम इस तरह से भी तो कर सकते थे, इस तरह से भी तो कर सकते थे। फिर वो जो उसका रिएक्शन हो रहा होता है, वो जो इंसान के अंदर एक गुस्सा पनप रहा होता है। मसला ये है कि गुस्सा जहां पे निकल जाए तो चलें, बातों के जरिए से निकल जाए, भड़ास निकल जाए तो अच्छा है, जबान से निकल जाए, लेकिन मीन वर्ड्स के अलावा, कुछ ऐसे लफ्जों के अलावा जो इंसान के दिल पर तलवार के जख्म मुंदमिल हो जाते हैं, बिल्कुल सिरे से गायब भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी क्रीम्स आ गई हैं कि इंसान अगर कोई जख्म भी उस पर लग जाए तो वो क्रीम लगाए तो वो ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज आ गई हैं कि बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कोई जख्म पहले था, लेकिन वो जो अल्फाज के जख्म होते हैं, लगता यही है कि स्किन पे कोई जख्म नहीं है, लेकिन मन के अंदर उसके बहुत बड़े बड़े जख्म होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ अगर सही ना किए जाए तो नासूर भी बन जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए दिल के अंदर एक ऐसा गढ़ा बन जाते हैं जिसमें इंसान इंसानों को भी दफनाने की कोशिश करता है कि आज के बाद ये मेरे लिए नहीं है, चाहे इस दुनिया में वो जिंदा रहा हो। लेकिन अभी ताज़ा की मिसाल है कि गुस्से में किसी इंसान के दिमाग में एक नस फट गई और वो जान से गया। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए इंसान को। अब जो उसके पीछे जो उसको गुस्सा दिला रहे थे या कोई वजह बने थे या कोई भी ऐसा इंसान था जिसने उसके साथ ऐसा किया था, अब उसको बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों उससे गुस्से में बात की, मैंने क्यों उसको गुस्सा दिलाया। इस दुनिया में रहते हुए इंसान इंसानों के काम आते हैं, और अगर इस दुनिया में रहते हुए ही अगर दूसरों को समझने की कोशिश की जाए, ना कि उनके जाने के बाद, वो जो एक चारपाई होती है जिसको मुख्तलिफ लोग आगे बढ़ा रहे होते हैं एक के बाद एक, उसके बाद फिर अगर आप अफसोस करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर वो है ना तख्लीककार, वो इस गम को भी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जहन से याददाश्त से कमज़ोर करता चला जाता है, गम कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। बहरहाल 12:29 पाकिस्तान का मायारी वक्त, बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो बातें बहुत सी हैं जो आपसे करनी है मुझे, लेकिन क्या करूं, इस समय सुनने का दिल बहुत चाह रहा है जैन जुहेब की आवाज़, बहुत लंबे अरसे के बाद। रांझे आवे दम नाल दम भरांगी रांझे आवे, जेमे कवेंगा करांगी रांझे आवे। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम तो ज़ियान जुम का होता है, रहमान अनवर कहां से आ गए? मंगल की रात 12 से लेकर 2 बजे तक ज़ियान जुम आपका साथ निभाया करते हैं, लेकिन आपने दुआ करनी है, उनके मैदे के कुछ मसाइल हैं,
स्टमक उनका डिस्टर्ब है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, मोहब्बत से मुझे कहा या फिर हुक्म दिया कि रहमान इस वारी तेरी वारी है, तू जाके करना। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह उनको सेहत दे। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे पता है बहुत से मोहब्बत करने वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं अगर उनके प्यारे किसी तकलीफ में हो। हाँ तकलीफ तो है लेकिन बर्दाश्त में है, अभी बर्दाश्त में है और उसका ट्रीटमेंट वो करवा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो आपके साथ होंगे। आज भी आपसे मुलाकात रहेगी, कल रात भी आपसे मुलाकात रहेगी 12 से लेकर 2 बजे के प्रोग्राम में। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम पूरी दुनिया में सुना जा रहा है FM 101 की फ्रीक्वेंसी पे। आपके साथ आपका मेजबान रहमान अनवर और ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। वापस आऊंगा, आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

FM 101, The Sound of New Millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium.

सबसे पहले मैं वो नाम लिया करता हूँ जिनके तवस्सुत से मेरी आवाज आपकी समातों तक बगैर किसी प्रॉब्लम के पहुंचती है। ड्यूटी रूम में मेरा साथ निभाया करते हैं अदील भाई। अदील भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। एमसीआर में आदिल भाई हमेशा मेरा साथ निभाया करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें। इतनी मोहब्बत से, इतने मान से जब कोई गले लगाता है, जब कोई आने पे खुश आमदीद करता है और खुश आमदीद करते हुए उसके अंदर की जो पॉजिटिव वाइब है वो महसूस होती है, उसकी आंखों की चमक महसूस होती है। क्या ये मेरे आने पे इसके अंदर ये चमक महसूस हुई है या आई है, तो एक अजीब सा एहसास मिलता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसी खूबी हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या। लेकिन उस पॉजिटिव वाइब का सबसे बड़ा असर ये होता है कि दिल बड़ा खुश हो जाता है, मान और ज्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई, खुश रहें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में जो हमारे प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं, उनका नाम है खदीजा मुराद साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम, सलामत रहें, आबाद रहें। सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते हैं जुबैर बशीर साहब, नगमाना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। किंजा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर हैं अहमद सुहेल बसरा साहब। इन सभी शख्सियात का बेहद शुक्रिया। बहरहाल अक्सर ये कहा करता हूं कि अगर मेरी आपसे ये पहली मुलाकात है तो अभी कोई अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम किसी के बारे में अंदाजा लगाने में बहुत जल्दी किया करते हैं, और जब वो इंसान वैसा नहीं साबित होता जैसा हमारे अंदाजे ने हमें बताया होता है कि ऐसा हो सकता है वो, या फिर ऐसा ही है वो, बाज़ औक़ात अंदाजे भी तो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर हतमी राय हमारी ये बन जाती है कि वो ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा है, जैसा उसकी गुफ्तगू से मुझे महसूस हुआ है। पहली मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं करना होता। ये कोई जॉब नहीं है कि जहाँ पे आपने परखना है कि जिसको मैंने रखा है क्या वो इस काबिल भी है या नहीं, क्या उसको वो काम आता भी है या नहीं जिसकी मैंने उसे सैलरी देनी है। वहां पे एक पल में परखने की या उसकी सीवी के जरिए से उसको जानने की, उस कागज के टुकड़े से उसको जानने की कोशिश की जाती है। ऐसा यहां पे ऐसा नहीं। जहां पे पहली मुलाकात गुफ्तगू की सूरत में हो रही हो तो उसको सिर्फ गुफ्तगू समझकर अपने अंदर उतरते देना चाहिए, या फिर उस गुफ्तगू में खुद भी गूंध जाना चाहिए, या फिर ये कहूं कि उसके रंग में रंग जाना चाहिए।

ऐसे में होता ये है कि जब हम उसके मुताबिक हो जाते हैं, पल भर के लिए, कुछ लम्हे के लिए उसके हो जाते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर अपनी असल शख्सियत से हमें मिलवाने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक रहते हुए दूसरा इंसान भी पहली मुलाकात में या पहली गुफ्तगू वाली मुलाकात में ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा हो कि मेरे पास कितने अच्छे लफ्ज हैं, मेरे पास कितना अच्छा लहजा है, मेरे पास कितना अच्छा इखलाक है। लेकिन ये सब कुछ अगर फर्जी है, वक्ती है, जानबूझकर बनाया गया है, तो ज्यादा देर पा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादा देर तक वो ऐसा ही रहे। जब उसको ये महसूस होने लगता है कि दूसरा इंसान अपनी बड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर अपने आप को कुछ मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा, या ये जतलाने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं कितने पानी में हूं, मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो फिर वो भी अचानक से ठटक कर रुक जाता है। अचानक से इस सफर के अंदर एक मोड़ आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो फिर क्या यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे अपने दिल की सारी बातें, अपना असल उसके सामने रखना है? आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू उस टॉपिक की जाने बढ़ती चली जा रही है जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। बात रंगने की है। जब इंसान रंग जाए ना, तो इंसान के लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। उसके लिए अपना अलग, अपना अलग रंग उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना अलग रंग वाजे करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ शायद फिर यूं हुआ। थैंक यू सो मच माही, दिल्ली से आप मुझे सुन रही हैं इस समय। इस समय वहां पे वक्त है 1:08।

FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium.

वक्त की घड़ी जिस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, जमाने का जो शोर है वो आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता चला जा रहा है। मटेरियल, माशर्ती चमक और बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश, बस भागने की कोशिश, आगे बढ़कर जमाने के चकाचौंध को अपने लिए, सिर्फ अपने लिए समझने की कोशिश। इंसान को अंदर से बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला कर देती है चाहे जाने की ख्वाहिश। सब मुझे चाहें, सब मुझे अपनाने की ख्वाहिश करें, सब मेरी बातें करें, सब मुझे याद करें। क्यों क्यों ऐसा हो? ये वही बातें हैं जिन्हें हम रोज अपनी जिंदगी में या फिर आसपास दूसरों की जिंदगी में होते हुए महसूस कर रहे होते हैं, मगर कभी समझने की कोशिश नहीं करते। वो हमारे सामने होती हैं लेकिन हमारी नजर उन पर ठहरती ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो आंखें हैं वो दुनिया को तो देख लेती हैं, दुनिया में मौजूद कामयाबियों को, चमक दमक को तो देख लेती हैं, मगर हमारे अंदर देखना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है इन्हीं आंखों के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर मन को देखने के लिए सिर्फ यही आंखें काफी नहीं हैं। एक लम्हे के लिए अगर हम ये तसव्वुर करें, एक दरख्त है बहुत सरसब्ज, बहुत तनावर, बहुत बड़ा, जिसकी शाखों पर परिंदे चहचहाते हैं, बैठते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, जिसके साए में मुसाफिर आराम करते हैं, ठंडी हवा महसूस करते हैं। वो जो एक जगह होती है उसकी जड़ें उनके ऊपर ही बैठ जाया करते हैं। और कुछ ऐसे दरख्त भी होते हैं जिनके फल दूसरों की भूख मिटाते हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि अगर एक दिन उस दरख्त की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? पहले दिन शायद कुछ भी महसूस ना हो, दूसरे दिन भी शायद वैसा ही दिखाई दे, तीसरे दिन भी ऐसा लगे कि उसके पत्ते अभी भी सरसब्ज हैं, अभी भी शादाब हैं, लेकिन अंदर, वहां अंदर एक गहरी खामोश मौत शुरू हो चुकी होती है। क्योंकि दरख्त को सिर्फ धूप जिंदा नहीं रखती, उसे उसकी जड़ें जिंदा रखती हैं। इंसान भी कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। मुझे लगता है कि जैसे हमने अपने घरों को तो मजबूत कर लिया है, बहुत बड़ा बना लिया है, बहुत खूबसूरत बना लिया है, हर तरह की आसाइश हमने उसमें लगा ली है जिससे हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी हमें ऐसा ना करना पड़े जिसकी वजह से हमें लगे कि हम बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हैं। सब कुछ हमने कर लिया है लेकिन अपने अंदर के घर को कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि वीरान कर दिया है? बाहर के घर को मजबूत बनाते बनाते अपने अंदर के घर को क्यों मजबूत नहीं करने की कोशिश की हमने? क्यों हमने उसको वीरान होने दिया? हमने अपने चेहरों को सवार लिया है मगर अपनी रूह की तरफ देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। हमें यही नहीं पता कि रूह क्या है, जिसके मुतालिक जिसने रूह को तख्लीक किया है उसने भी बहुत कम बात की है, तख्लीककार ने भी रूह के बारे में बहुत कम बात की है। कभी क्यों समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों कम बात की है? पता है ना, बच्चा हमेशा वही काम सबसे पहले करता है जिससे उसे मना करने की कोशिश की जाए, जिसके बारे में उसे लाख समझाया जाए कि ये मत करना, वो सबसे पहले वही करने की ठान लेता है
कि जब मौका मिला, जब ये नजरें इधर उधर हुई माँ बाप की, तो मैं सबसे पहले वही काम करूंगा। हमने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है, मगर खुद को पहचानने की फुर्सत ही नहीं मिलती। पहचान बना ली है रहमान अनवर जी, आरजे रहमान अनवर, रेडियो प्रोग्राम करता हूँ जी, रात के समय में अधूरी बातें प्रोग्राम होती हैं, हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ जी, वीलॉग भी बनाता हूँ जी, सब कुछ करता हूँ जी, मगर वो अंदर क्या है, अंदर पहचानने की फुर्सत मिली है रहमान तुम्हें? हाँ? शायद इसीलिए आज एक अजीब सी बेचैनी है जो मुझे महसूस हो रही है हर तरफ, हर जगह। वसाइल पहले से ज्यादा है मगर सुकून पहले से कम है, राबते पहले से ज्यादा हैं, पहले से ज्यादा करीब हैं हम। हजारों किलोमीटर दूर लोग रहते हैं लेकिन एक मैसेज सेकंड के किसी एक बहुत आखिरी हिस्से में या पहले हिस्से में वहां तक पहुंच जाता है और उसी मिनट में जवाब भी वापस आ जाता है। इस तरह से नहीं है कि पहले खत लिखा और उसको पोस्ट किया, फिर पोस्ट बॉक्स में वो काफी अरसे तक पड़ा रहा, फिर वहां पे डाकिया वो खत लेने आया, फिर उसने पूरे खतों को जमा किया और फिर जहां जहां की मंजिल थी उस तरफ रवाना किया, हाँ? और फिर जाके वो खत एक और घर में जाके उसने डिलीवर किया और फिर वहां पे खत को देखा और शायद कहीं रख दिया कि जब वक्त मिलेगा तो पढ़ लेंगे, या फिर जब सब सो जाएंगे तो फिर पढ़ लेंगे। तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे या कबर्ड में कहीं पे कपड़ों के नीचे, हाँ? फिर आखिरकार उसको खोलने का वक्त आया, फिर वो पढ़ा, फिर वो पढ़ते हुए वो लिखने वाला और लिखने वाले के तमाम जज्बात, एहसासात, उसकी सतरें, वो लाइनें, जिस तरह से उसने वो अल्फाज, जिस तरह से उसने लिखे हैं वो लफ्ज़, जिस तरह से उसने लिखे हैं, उन सबको जानने की कोशिश की कि उसने मेरा नाम लिखा है और मेरे नाम के हर हर्फ को उसने किस तरह से लिखा है, किस जज्बे से लिखा है, किस अजियत से लिखा है, या किस मोहब्बत से लिखा है, या किस अपनायत से लिखा है, और फिर उसके बाद सोचना कि अब इसका क्या जवाब दूं, फिर कई दिन उस जवाब को तख्लीक करने में, उसको सोचने में, समझने में लग जाने, और फिर एक वक्त आना जब लिखने का दिल चाहना कि अब इसका जवाब देना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कभी जवाब ही नहीं आए, लेकिन जिनको जवाब मिल गए बड़े खुशनसीब थे वो लोग। अब तो वो नहीं, अब तो एक लम्हे में एक मैसेज डिलीवर हो जाता है, अब तो डबल टिक होता है व्हाट्सएप पे और फिर ब्लू टिक होता है तो पता चल जाता है कि उसने पढ़ लिया है।

बहरहाल इन सब में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हमारा जो वो हिस्सा है हमारी जात का, हमारा अपना अपना हिस्सा, वो जैसे कहीं खो गया है, ऐसा है ना, हमारा असल कहीं पे गुम हो गया है। बातें बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, लेकिन अब सुनने वाले कम हो गए हैं। वो दिल पहले से ज्यादा खामोश हो गए हैं, वो लब पहले से ज्यादा, जबान पहले से ज्यादा खामोश हो गई है। आज का सवाल आपके सामने दागने जा रहा हूं, जी हां दागने जा रहा हूं, ये दाग ही तो है कि इसको समझने की कोशिश करनी पड़ रही है, जानने के लिए आपका सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा है ये सहारा भी।

सवाल यह है कि इंसान अपने असल से दूर क्यों होता चला जा रहा है, और उस दुनिया में रहते हुए हम अपने असल को महफूज कैसे रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात, इंसान अपनी हकीकत से दूर क्यों होता चला जा रहा है और हम अपनी हकीकत को, अपने असल को महफूज कैसे रख सकते हैं। ये सवाल मेरा दिल चाह रहा है आज आपसे पूछूं, आज आपसे जानूं कि वो जो हमारा असल हिस्सा है वो गुम क्यों होता चला जा रहा है। जमाने के सामने हम जमाने के साथ या जमाने की तरह बनने की कोशिश में अपने असल को क्यों दगा दे रहे हैं, क्यों बेवफाई कर रहे हैं, क्यों अपने आप को तोड़ रहे हैं, क्यों वो जो हम नहीं हैं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों है ऐसा हुँ? मैं जानना चाहता हूं आज, अगर आप मुझे बताना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा एहसास मिलेगा। टेलीफोन लाइन पे आपकी कॉल्स मैं रिसीव करूंगा, लेकिन इस समय माही आपकी फरमाइश पे ये ट्रैक मैं शामिल कर रहा हूं। जवाद अहमद की खूबसूरत आवाज, बिन तेरे क्या है जीना।

0: है ना, ये याद था मुझे।
1: बिन तेरे क्या है जीना,
0: मैं गाता नहीं लेकिन सुरों की मुझे पहचान है। आप सबके लिए कहीं जाइएगा मत, आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, मैं चाहता हूं कि आप यहां रहें। 1:04 वक्त पर लगाकर उड़ता है, अभी 12 बजे मैं आया था, अभी 1:04 हुआ चाहते हैं।
1: तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बे।
0: जब अगली बार वक्त बताऊंगा तो 2 बज चुके होंगे और अलविदा करने का वक्त आ चुका होगा, जुदा होने का लम्हा आ चुका होगा।
1: बिन तेरे क्या है जीना,
0: फिर वो नज्म पढ़ूंगा कि जुदा होने का मौसम आ गया है। उदासी बैनर उठाए फिर रही है बेवफाई के।

0: मुझ पे तेरी तमन्ना का इल्जाम साबित ना होता तो सब ठीक था। जमाना तेरी रोशनी के तसलसल की कस्में उठाता है,
1: मुझे कहना
0: और मैं तेरे साथ रह के भी तारीकियों के तनाजुर में मारा गया। मुझ पे नजरे करम कर, मुखातिब हो मुझसे, मुझे ये बता मैं तेरा कौन हूँ। इस ताल्लुक की क्यारी में उगते हुए फूल को नाम दे। मुझको तेरे मोहब्बत पे शक तो नहीं, पर मेरे नाम से तेरे सीने में रखी हुई ईंट धड़के तो मानो। कब तलक मैं तेरी खामोशी से यूं ही अपनी मर्जी के मतलब निकालूंगा। मुझको आवाज दे, चाहे वो मेरे हक में बुरी हो। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, चाहे वो मेरे हक में बुरी हो। तेरी आवाज सुनने की ख्वाहिश में कानों के पर्दे खिंचे जा रहे हैं। बोल दे कुछ भी जो तेरा जी चाहे बोलना। तेरे होंठों पे मकड़ी के जालों के जमने का दुख तो बहरहाल मुझको हमेशा रहेगा। तूने चुप ही अगर साधनी थी तो इजहार ही क्यों किया था। ये तो ऐसे है बचपन में जैसे कहीं खेलते खेलते कोई किसी को स्टैचू कहे और फिर उम्र भर उसको मुड़के ना देखे।

0: कुछ देर के लिए इसको बीजीएम पे रखते हैं, कुछ देर के लिए इसको बैकग्राउंड पे रखते हैं और आपसे बातें करते हैं। डॉक्टर राबिया मुझे ये कह रही हैं कि रहमान आज वक्त गुजर गया लेकिन आपने वो शेर नहीं पढ़ा जो आपने स्टेटस पे लगाया है। मुझे याद भूल गया, नहीं खालिद नदीम शानी का शेर है ये शायद। हाँ, क्या मुझे साथ ले गए हो तुम, क्या मुझे साथ ले गए हो तुम, मैं यहां मिल नहीं रहा खुद को। खालिद नदीम शानी।
1: तेरी प्रीत याद आए मेरे नींद, जो तुझ पर लिखे थे वो सारे मेरे गीत।
0: कुछ तरीकेकार जिनके जरिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471 4471। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/FM101 लाहौर। फेसबुक सर्च बार में जाकर बस इतना लिखिए FM101 लाहौर, आपको मेरी पोस्ट मिलेगी। पहली पोस्ट मेरी ही है, उस पे लिखा होगा क्या मुझे साथ ले गए हो तुम, मैं यहाँ मिल नहीं रहा खुद को। प्रोग्राम अधूरी बातें आज रात 12 बजे सुनिए अपने मेजबान रहमान अनवर के साथ। जी हाँ, ये पोस्ट है और एक पिक्चर है, आप चाहें तो वहां पे रहते हुए मुझे अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, लाइक्स की सूरत में या फिर कमेंट्स की सूरत में, कोई मसला नहीं है। अपने दिल की हर बात आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा, खास तौर पे मैं। ये सारे मैसेज मुझ तक पहुंचेंगे, मैं जज नहीं करूंगा। आप बताएं अपने असल से दूर क्यों हो गए हैं आप, और आप महफूज कैसे रख सकते हैं अपने असल को, अपनी सच्चाई को, अपने आप को। टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 042, जी हाँ ये लाहौर का इजाफी कोड है 042-111-00001, 042-111-00001, ये है लाहौर का इजाफी कोड 042। आपको मिलाना होगा अपने मोबाइल फोन से कॉल करने की सूरत में, लैंडलाइन से कॉल करेंगे तो 111-000001, लेकिन 042 फिर भी मिलाना है। और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से हमें कॉल करना चाहते हैं तो 00924211-00924211-00001। टेलीफोन लाइन पे आपकी पहली कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ से। लाहौर से रिमशा
0: जी। रिमशा, क्या क्या कहना चाहेंगी आप?
2: आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आप जिया अंजुम भैया की जगह तो शो करने के लिए आए हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, जिया की जगह।
2: तो अभी उनकी तबीयत कैसी है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बस मैदे का कुछ इशू है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ होंगे।
2: ओके। और भाई अभी अभी आपने कॉल पिक की है लेकिन आपकी जो कॉल पर आवाज आ रही है ना वो बहुत कटकर आ रही है।
0: कटकर आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू ना हो।
2: नहीं नहीं, मैं छत पर हूँ, आपकी आपकी कॉल में थोड़ी सी खराबी है।
0: अच्छा, कॉल में खराबी हो सकती है लेकिन मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है।
2: लेकिन आपकी आवाज जो है ना थोड़ी थोड़ी बीच में से कट रही है और साफ नहीं आ रही।
0: अच्छा, साफ नहीं आ रही। चलें, इसको हम आदिल भाई ने सुन लिया होगा, इसको अभी हम देखते हैं। बाय द वे, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप कुछ कहना चाहती हैं प्रोग्राम में टॉपिक के हवाले से या किसी भी हवाले से तो आप कह सकती हैं।
2: एक बार भाई आप टॉपिक रिपीट कर सकते हैं?
0: अच्छा, टॉपिक ये है कि बल्कि इतनी जल्दी रिपीट करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं जब टॉपिक आपके सामने डिस्कस दोबारा करूंगा तो दोबारा कॉल कीजिएगा। टेलीफोन लाइन पे दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
3: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
3: रहमान भाई, डॉक्टर सादत इस्लामाबाद।
0: डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन का इस बार शिकार है।
3: अब बेहतर है जी?
0: हेलो,
3: अब बेहतर है?
0: आप बहुत ज्यादा हवा जैसे महसूस हो रही है, काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन महसूस।
3: दोबारा
0: ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा बाज़ुकात हो जाया करता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन फिर दूसरी तरफ कुछ और मामलात भी चल रहे होते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। एक ट्रैक प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ, ये प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसा है। अगर तो कॉल्स हो सकती हैं तो ठीक है, वरना फिर अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करता है। मस्त हुआ इसरार की खूबसूरत आवाज, आप सबकी समातों की नजर हुआ।

अपने लिए अगर लिखी, मेरे लिए अगर लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो हमारे प्रोड्यूसर्स के हवाले से या कोई ऐसी बात कहे तो जरा दिल दुख जाता है, जो कि इतनी मोहब्बत, इतने इतने प्यार से और इतने इनहमाक से हमें सुन रहे होते हैं। वकास खान, यहां पे एक आईडी है, ये आईडी याद रखनी है आपने। इन्होंने एक मैसेज लिखा है, कहते हैं कि समय हिंदी का लफ्ज है, रेडियो पाकिस्तान के ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं, कभी सोचा ना था, पता नहीं रेडियो पाकिस्तान ने कैसे, बहरहाल आगे जो लफ्ज लिखा है वो जरा थोड़ा सा बेअदब है। देखिए चेक करें कि अदब के हवाले से बात कर रहे हैं और कितनी बड़ी बेअदबी कर रहे हैं, और इन मतलब मौसूफ को, इन इस बेचारे इंसान को, वकास खान को, क्योंकि इसकी पिक्चर भी लगी हुई है, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स यहां पर लेके रख लिए हैं। बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन सच बोलना ज्यादा मैटर करता है, अच्छा लगता है, और मुझे लगता है उर्दू के बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरे, वरना इनको ये इल्म होता कि उर्दू लफ्ज सिर्फ, उर्दू जो जबान है, उर्दू लफ्ज जो है, ये टर्की से हमने लिया हुआ है। समझ आ रही है आपको वकास भाई? जो उर्दू जबान है हमारी, उसका पहला लफ्ज यानी लैंग्वेज उर्दू, ये टर्की से ये लफ्ज हमने लिया है। और दूसरी बात यह कि इसमें हिंदी के, संस्कृत के और फारसी के, अरबी के, बहुत सारी लैंग्वेजेस के मिक्सचर वर्ड्स हैं, जिनसे मिलकर ये लश्करी जबान तख्लीक में आई है। उर्दू लिटरेचर के बारे में अगर कुछ पढ़ा होता आपने, कुछ समझा होता, तो आपको पता चल जाता। मुझे लफ्ज समय अच्छा लगता है, मुझे लफ्ज वक्त अच्छा लगता है, मुझे लफ्ज इंसान अच्छा लगता है, मुझे मानव लफ्ज अच्छा लगता है, तो मैं सारे लफ्ज यहां पे अदा कर सकता हूं। लफ्ज की बात हो रही है, अल्फाज की बात हो रही है, जो उर्दू अदब के अंदर मौजूद है। बहरहाल अगर अल्लाह ताला ने टाइपिंग करने की आजादी दे रखी है, उंगलियों को ये हरकत मिल रही है, आपका दिमाग में ये सकत मौजूद है कि आप पैगाम भेज सकते हैं उंगलियों की पूरों को कि मैसेजेस ये टाइप करना है, तो कुछ अच्छा भी टाइप किया जा सकता है। अभी स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं ये मैसेज जो है ये बताकर, यानी सबके सामने ये डिलीट कर रहा हूं, और ये बाकी तमाम चीजें जो है वो बाद में इंशाल्लाह नोटिस में आएंगी। बहरहाल टेलीफोन लाइन को एक बार फिर आजमाने की कोशिश करते हैं। आदिल भाई ने ट्राई किया है, देखते हैं कि ये चीज जो है, ये हमारा पैनल में जो अगर कोई इशू है तो ये ठीक हो रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, डिस्टॉर्शन अभी भी है, इसका मतलब है कि हम आज आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना पाएंगे।

FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, The Sound of New Millennium.

0: 1:34। बहरहाल प्रोग्राम में एक टॉपिक है जो मैंने सवाल आपसे पूछा है, वो एक बार फिर से बता दूं आपको। इंसान अपने असल से दूर क्यों होता चला जा रहा है और हम कैसे अपने असल को महफूज रख सकते हैं, हम कैसे अपने असल को बचा सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार जो आवाज आई है वो बगैर किसी डिस्टॉर्शन के आई है और हमारे हमीद गुल साहब की आई है। हमीद गुल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
1: ठीक है सर।
0: अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है। मुझे लग रहा है कि आपको जुकाम है।
1: ये मेरा तो गला बड़े दिनों से खराब है।
0: हाँ, गला बहुत से लोगों का खराब है, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे मिजाज हैं? सब खैरियत है? बाकी घर में सब ठीक है?
1: अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है
0: जी। हमीद गुल साहब, कहिएगा क्या कहना चाहेंगे?
1: दुआ गो सबके लिए, अल्लाह हर तरफ खैर रखे।
0: आमीन आमीन सुम आमीन।
1: खैर की बारिश हो जाए।
0: और बारिश हो जाए। यस,
1: बारिश का होना बड़ा जरूरी है।
0: हाँ, बारिश का होना जरूरी है। खुश्क खांसी खत्म हो जाएगी और फिर बहुत सी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी।
1: अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे बड़ी डिस्टॉर्शन है।
0: अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है, थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है।
1: हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी डिस्टॉर्शन में है।
0: हाँ, ऐसा है, ऐसा है।
1: ये मैं आपको सही बता रहा हूँ?
0: नहीं, आप सही कह रहे हैं।
1: हर आदमी बड़ी डिस्टॉर्शन में।
0: हाँ, ऐसा है।
1: वो आपके टॉपिक के लिए एक शेर सुना देता हूँ।
0: जी जी।
1: रहमतुल्लाह का शेर है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है
0: जी।
1: आज सजदा खालिक को भी, इबलीस को याराना भी।
0: हाँ,
1: सजदा खालिक को भी, इबलीस को याराना भी, बिना हशर में किसी से अकीदत का
0: अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
1: मेरा ख्याल है इसमें लंबी तमहीद मैं नहीं मांगूंगा।
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारा जवाब इसमें मौजूद है।
1: मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ।
0: सुनाइएगा।
1: अपना अपना एक तजुर्बा है।
0: जी जी।
1: मेरी ताज़ा नज़्म है और मैं ये शायद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
0: जी जी।
1: मैंने अभी तक नहीं पढ़ी।
0: जी जी, सुनाइएगा।
1: मैं आपसे के सामने अपनी नज़्म की दो चार लाइनें रख रहा
0: हूँ।
1: आप बताइएगा नज़्म का उन्वान। नज़्म का उन्वान अभी तक मैंने नहीं रखा। देखिए इस नज़्म को, कि कुछ माँ ने कुछ बाप ने था सिखाया मुझे।
0: वाह।
1: कुछ माँ ने कुछ बाप ने था सिखाया मुझे,
0: सिखाया मुझे।
1: और जब मैं बड़ा हुआ तो कुछ हालात ने बताया मुझे। और जब मैं बड़ा हुआ तो कुछ हालात ने बताया मुझे कि वो आधा सच था। वो आधा सच था,
0: वो आधा सच था।
1: लेकिन जब पूरा सच मेरे हाथ लगा तो पता चला। लेकिन जब पूरा सच मेरे हाथ लगा तो पता चला कि उस आधे सच के भीतर भेद क्या है।
0: हाँ,
1: उस आधे सच के भीतर भेद क्या है, दिलों में छुपा वो छेद क्या है।
0: हाँ,
1: आपके सामने एक लाइन रख के इसके साथ इजाजत चाहूंगा कि दिल में छुपा वो छेद क्या है जिसको मैं अब तक सूद समेत लौटा रहा
0: हूँ। जिसको मैं अब तक सूद समेत लौटा रहा हूँ। सलामत रहे, सलामत रहे अमित गुल साहब।
1: और आपने एक शेर लिख दिया था अपने उस पे।
0: जी।
1: नदीम शानी का।
0: जी जी।
1: क्या मुझे साथ ले गए हो तुम?
0: मैं यहाँ मिल नहीं रहा खुद को।
1: हाँ, देखिए क्या खूबसूरत मजमून, मजमून को जॉन अली ने बड़ा खूबसूरत बांधा था।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: जॉन अली का शेर था कि आप मुझसे मिलने आए हैं,
0: बैठिए बुला कर लाता हूँ, बुला के लाता हूँ।
1: हाँ, तो ये देखें, ये कंट्रोवर्सी भी जो है ना, मैंने इसलिए आपको कहा दुनिया आजकल बड़ी डिस्टॉर्शन का।
0: ठीक है, ठीक है हमीद गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें।
1: जज़ाकअल्लाह,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या मुझे साथ ले गए हो तुम, अपने आप में बड़ा खूबसूरत है।

0: मुल्तान से मेरे बहुत प्यारे भाई मार्जे रजा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, आपने लिखा है, कह रहे हैं कि इतनी कॉल्स की हैं अभी एफएम पे नॉट अटेंडेड और आपके नंबर पे भी। अच्छा, मैं माजरा चाहता हूं, अल्लाह आपको और भी इज्जत दे, सलामत रहें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपसे बात करता हूं रजा भाई, सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमान
0: जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं जी?
1: जी रहमान भाई, अब्दुल हफीज रंजा बात कर रहा हूं लाहौर।
0: जी अब्दुल हफीज भाई, क्या कहना चाहेंगे?
1: भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल पिक कर ली, मैं बहुत टाइम से कॉल कर रहा था।
0: सलामत रहें, सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच।
1: अब आते हैं टॉपिक की तरफ।
0: जी जी,
1: आज आपने बातें की हैं, सबसे पहले तो मेरे बहुत दिल को खुशी हुई कि चलो किसी ऐसी बातें भी सुनी आपके बैठ के स्वाद में।
0: जी
1: फिर जब आपने सवाल दोहराया तो यही सवाल मैंने फिर रहमान भाई रहमान की तरफ मुंह करके रहमान से पूछा कि या खुदा क्या जवाब क्या है। जवाब आया अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा के शेर में कि हम तो माइल बकरम हैं,
0: हम तो माइल बकरम हैं,
1: कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरुए मंजिल ही नहीं,
0: रहरुए मंजिल ही नहीं,
1: तरबियत आम है जो हर एक काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो दिल ही नहीं,
0: ये वो दिल ही नहीं,
1: अरे हर कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं,
0: नहीं देते हैं।
1: रहमान भाई तक है, जब से हमने ना अपने रब को और कुरान पाक को छोड़ दिया, हम लोग रुल गए, हमें अपना आप नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जो अपना आप है वो इन दो चीजों के अंदर है, एक तो जिसने बताया, ठीक है, और फिर जिस अंदाज में बताया,
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
1: बताने वाला रहमान और जिस अंदाज में बताया वो कुरान।
0: जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है,
1: ठीक है, हमने दोनों को छोड़ दिया। अब देखे तीसरी चीज ये है कि उधर कट रहे हैं कि बिलाए अव्वल में मुसलमान,
0: हाँ,
1: मगर लगता है तुम शर्मो हया बेच कर खा गए, किस मुंह से करोगे हश्र में सामना उनका, रांझा जो राहे हक में सारा कुंबा लुटा गए,
0: लुटा गए,
1: ठीक है। आज अगर हम बिहार का नाम लें, दहशत गर्द किरदान दिए जाते हैं, तो वो दहशत गर्द क्यों नहीं है कि जो मासूम मुसलमानों का खून कर रहे हैं। ये बात है ना, हमने जिहाद को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, अपने रब को छोड़ दिया, और हम रुल गए, हमें अपना आप नजर ही नहीं आता है। हमारा जो अंदर है ना, हमने हर चीज को पक्का कर लिया, लेकिन अंदर वाले वही बात आप कह, हमने अपने मकानों को तो पक्का कर लिया, अंदर वाले को ना कच्चा भी नहीं रहने दिया, पता नहीं हमने उसको कहीं दफन नहीं कर दिया,
0: वापस लौटना पड़ेगा हमें, ऐसे ही है।
1: अगर हम नहीं लौटेंगे, हम उन्हीं लोगों में शुमार किए जाएंगे कि जिनके बारे में कुरान पाक में बेबहा जगह पे जिक्र है, ठीक, एक वक्त आएगा कि फिर अल्लाह ताला जब कहता है कि मैं, देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमान से कुछ कहने ना कि शफात शफात की होगी, ठीक है, और मोमिन वो है जो अल्लाह ताला के अहकाम को माने, ठीक है, जो अगर बुरा है उससे गलती हो तो उसके ऊपर तौबा करे।
0: सलामत रहे मेरे भाई, खुश रहे, बहुत खूबसूरत बात है आपने की,
1: बहुत शुक्रिया रहमान,
0: बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह आपको भी, अल्लाह ताला आपको भी सलामत,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।

0: टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: क्या हाल चाल है अनिला आपकी? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। दुआ गो मुझे तो जहाँ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
0: आमीन सुम्मा आमीन।
1: और ज़िया के लिए बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला ने सेहत सलामती वाली
0: सुम्मा सुम्मा आमीन।
1: और टॉपिक
0: अनिला, आज का जो टॉपिक है वो मैं ये चाह रहा था कि आप जरूर उस पे ज़रूर बात करें। आप बताएं कि हम अपने असल से दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्या वाकई में हम अपने असल से दूर होते जा रहे हैं? पहला तो ये सवाल बनता है, लेकिन सच्चा सवाल ये है कि वाकई में दूर होते जा रहे हैं अपने असल से, और अपने असल को महफूज कैसे रखा जा सकता है?
1: पहली बात तो ये कि हम जो जी रहे हैं वो क्या जी रहे हैं? चेहरे पे चेहरा लगाया हुआ,
0: चेहरे पे चेहरा लगाया हुआ है। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यानी दूसरे की पसंद का चेहरा, जैसा उसको नजर आना बेहतर है, या जैसा उस वो हमारे लिए बेहतर अगर कोई फायदा दे रहा है वैसा चेहरा।
1: बिल्कुल, दूसरों की खुशी, दूसरों की मर्जी, मकसद अपना, तो चेहरे बदलते हैं।
0: अच्छा।
1: और जाहिर कुछ कर रहे हैं कुछ। अब जैसे आप सोशल मीडिया ले लें,
0: ऐसे ही है,
1: इसके दौड़ में लगे हुए, असल भूले हुए,
0: असल भूले हुए हैं। हाँ, ऐसे
1: हम चाहते नहीं असल देखे कोई हमारा।
0: कुछ वक्त के लिए हम अकेले नहीं बैठते हैं ना?
1: नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। आप ये
0: अकेले बैठे तो कुछ ऐसी मतलब अजीब सी हालत होने लगती है कि बेचैनी बढ़ जाती है, मतलब वो हर वक्त स्क्रॉल करने की जो आदत है उसकी वजह से,
1: उसकी वजह से हमने अपने आप को मसरूफ इस तरह का किया हुआ है। और ब्रांडों के पीछे भाग रहे हैं, शो शटके के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के दिखावे कर रहे हैं, लोगों के सामने उनकी मर्जी उनकी खुशी के दिखावे कर रहे हैं, मकसद क्या है ये?
0: अच्छा, अगर इसमें थोड़ी सी तसीह कर ली जाए अनिला, कि अगर आप अच्छे कपड़े नफीस लिबास पहनते हैं और आपके दिल के अंदर ये नहीं आता कि ये मैं किसी को दिखाने के लिए कि जी मैं, मेरे पास बहुत पैसा है, या ऐसा नहीं है आपके दिल में, तो फिर आप पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं।
1: मैं वही तो कह रही हूँ।
0: हाँ।
1: कि कोई मकसद हमारा क्या है?
0: हाँ।
1: हम लोगों से मुफाद हासिल करने के लिए उनको खुश करते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, और जाहिर वो करते हैं जो हम होते नहीं,
0: जो हम होते नहीं है। यस,
1: एक्चुअली हम मुफाद परस्त हैं,
0: मुफाद परस्त हैं।
1: हकीकत है हमारी उस तरफ नहीं जाते और नहीं चाहते कोई किसी को पता चले।
0: अच्छा, मफाद परस्ती को हम ये ले सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये हमें हमारे असल से दूर करती है?
1: बिल्कुल करती है। आप देखें ना, आप सिर्फ मकसद हासिल कर होते हैं दुनियादारी के चक्कर में, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसके मुताबिक सामान सौ बरस।
0: लेकिन अगर मकसद आपका आपकी रूह की तरफ आपको मायल करने के लिए हो, तो फिर मकसद वो वाला सही है। यानी अगर कोई इस तरह का इंसान है जो हमारी रूह से, हमारी जात से, हमारे खुदा से, हमारे अपने आप से हमें मिलवा रहा है, तो फिर वो मकसद बेहतर है आपके नजदीक? क्या कहते हैं?
1: वो तो ठीक है ना, लेकिन आप दुनिया की बात करें, दुनिया में रहने वाले लोगों की अगर बात करें, तो हम असल से दूर इसीलिए हैं कि हम दुनिया समझे कि एक थिएटर में हम किरदार हैं, हम अपने किरदार निभा रहे हैं, कभी किसी रूप में आते हैं किरदार में, कभी किसी किरदार में आते हैं, एक रूप नहीं है।
0: मुझे वो किरदार से याद आ गया कि पहली किस्तों में तेरी मौत नहीं हो सकती, अपने थिएटर को मैं वीरान नहीं कर सकता,
1: नहीं कर सकता। क्या बात है? तो ये देखिए कि अब इसमें ये कि हम लोग रिश्तेदारों से दूर हुए हैं, उनके साथ झूठ सच मारते हैं, अजीबो गरीब हमारी कैफियत हो गई हुई है, सिर्फ हम दुनिया के दिखावे। मैंने कहा ना कि सामान सौ बरस का और पल की खबर नहीं है,
0: पल की खबर नहीं है।
1: हम इस तरह से खो गए हैं।
0: बहुत सच्ची बात है।
1: असलियत भूले हुए हैं। अगर इसके लिए वापस आना तो तन्हाई में खुद से बैठ के मुलाकात करें, अपने आप को टटोलें, अपने रब के करीब होते हुए अल्लाह ताला से पूछें, आप वो आपको बताएंगे, जवाब देंगे कि तुम किधर जा रहे हो। अपने जमीर को झंझोड़ें।
0: अच्छा, वो वैसे झंझोड़ता होगा, वो आवाज लगाता होगा।
1: हाँ बिल्कुल,
0: जमाने की चकाचौंध और आगे बढ़ने की तेजी में, शोर में नजर नहीं आता होगा या सुनाई नहीं देता
1: नहीं
0: होगा।
1: बिल्कुल अमित साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सब डिस्टॉर्शन ही है हर जगह।
0: हाँ, ऐसे ही है।
1: हमारे दिलो दिमाग में भी, हमारी जिंदगियों में, हमारी सोचों में इतना शोर बरपा हो चुका है आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, शक्कत ले जाने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, अपनी बर्तरी का माल खोलिया जो हम लोगों में सवार हुआ है ना, उसने हमें बहरूपिया बनाया हुआ
0: ऐसे ही है।
1: हम रंग बदल बदल के, अपना अंदाज बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के, अपने किरदार चेंज कर करके आते हैं।
0: ऐसे ही है।
1: क्या कि हमें वो जो एक आखिरी वक्त है ना, जहाँ जाके हमने जवाब देने हैं,
0: जी हाँ,
1: उसके लिए कुछ अच्छा
0: नहीं, यानी जिस इम्तिहान को हम यहाँ पे निभा रहे हैं, बिता रहे हैं,
1: उसके लिए आगे कुछ अच्छा इकट्ठा करके नहीं जा रहे हैं,
0: हाँ,
1: हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जमीर को जोड़ें, जमीर को जगाएं, जमीर की आवाज को देखें और सुने और उसके ऊपर सोचें।
0: और अगर कोई ये कहे इस समय ये बात करते हुए या सुनते हुए कि ये हम किस तरह से करें, हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल क्या हो सकता है, एक साफ लफ्ज़े में, साफ जुमले में?
1: तन्हाई में अल्लाह ताला से और खुद से मुलाकात करें,
0: खुद से मुलाकात करें तन्हाई में और फिर रब की तरफ माइल हो जाएं।
1: बिल्कुल अल्लाह ताला से मांगे, वो आपको बहुत से रास्ते दे देगा, बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
0: ठीक है,
1: बहुत से मुश्किल हल होते हैं। टॉपिक बहुत खूबसूरत और ये बहुत ही गहरा और वसी टॉपिक है, इसमें बड़ी अच्छी और गहरी गुफ्तगू और भी हो सकती है। आपने भी जो इतना डिफाइन अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अनिला,
1: बहुत खूबसूरत दिल पास के साथ बड़ी अच्छी और बहुत सी गए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू लेके, और जो भी कॉलर हैं अल्लाह ताला सबको अपने जमान में सब सुनने का नसीब रखे, और आपको भी थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, डिस्टॉर्शन बीच बीच में स्टार्ट होती है ना, 1:52 टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। 4471 के पैगामात हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, मेरा नाम मरियम इस्लामाबाद से, मेरी शादी होने वाली है भाई, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, कि दुआ कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा करे मरियम, खुश रहें, आबाद रहें, याद रखिएगा कि तंज नहीं करना कभी। टेलीफोन लाइन पे लास्ट कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम,
2: क्या हाल है रहमान भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन, कहां से, क्या नाम है आपका?
2: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: नहीं समझ आया,
2: हमना फ्रॉम जर्मनी
0: जी, हमना क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, ईद पे हमारी बात हुई होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दरअसल ना इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं।
2: अब आवाज आ रही है?
0: हाँ जी, अभी अभी कुछ बेहतर हुई है। यस, नहीं बहुत डिस्टॉर्शन है, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, आपका भी वक्त यहाँ पे ज़ाय हो रहा है, तो मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ उसकी वजह से, कि बहुत बहुत डिस्टॉर्शन है, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही डिस्टॉर्शन की वजह से। हेलो, बड़ी माजरत के साथ, ठीक है।

बहरहाल आज की रात हमने एक सवाल रखा था, आखिर इंसान अपने असल से दूर क्यों होता चला जा रहा है और इस दुनिया में रहते हुए अपने असल को कैसे महफूज रखा जा सकता है। किसी ना किसी हद तक, क्योंकि बात बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन की वजह से चेंज भी हुई है, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी हुई है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जितने भी लोगों की गुफ्तगू हुई है या जो हमने की है उससे किसी ना किसी हद तक आपको कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने असल से एक दिन में दूर नहीं हो जाता। ये अमल, ये सफर आहिस्ता आहिस्ता तय होता है। पहले वो अपनी जमीर की आवाज को नजरअंदाज करता है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कुछ बुरा हो रहा होता है और हमें अपना अंदर, हमारा अंदर हमें जोर जोर से अलार्मिक सिचुएशन दे रहा होता है, अलार्म्स हमारे अंदर बज रहे होते हैं, बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहे होते, हमारे अंदर की बेचैनी वो ही अलार्म्स होते हैं और वो हमें बता रहा होता है, हमारा जमीर, हमारा अंदर, हमारा मन, हमारा अपना आप, हमारा असल, कि नहीं, बुरा हो रहा है, कुछ करो, कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करो, गलत होने से बचाओ। लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा क्या काम इसमें, हमारी तो कोई इसमें गलती नहीं है ना, हमें किसी दूसरे के मसले में क्यों अपने आप को डालना है। बहरहाल कुछ बातें बिल्कुल हकीकत पर मबनी भी हैं, लेकिन कुछ चीजें कुछ मेथड्स के जरिए से हल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारा पहला जो हिस्सा होता है वो हमें नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। दूसरी बार भी, फिर तीसरी बार भी, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बाहर तो सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच बच के हम आगे बढ़ तो जाते हैं, जीत तो जाते हैं, मगर अंदर एक अजीब सी खामोश वीरानी बस जाती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा है, ज्यादा शोहरत है, ज्यादा कामयाबी है, लेकिन सच्ची और असल हकीकत बताऊं क्या है, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत एक जिंदा दिल है, ऐसा दिल जो सच सुन सके, सच बोल सके, सच को कबूल कर सके, सच करने पर, सच्चाई को अमली जामा पहनाने पर मजबूर कर सके। इस दुनिया में रहते हुए अपने असल को महफूज रखना मुश्किल तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। जगह जगह पे मुख्तलिफ तरह के डिस्टॉर्शंस हमें मिलेंगे, डायवर्शंस हमें मिलेंगे, हमें रोक मिलेगी, हमें दीवारें मिलेंगी, आगे बढ़ने से रोका जाएगा हमें इस रास्ते पे चलते हुए, अपने असल को महफूज करने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए। लेकिन फिर भी हमें चंद फैसले जरूर करने हैं। आज के दिन में आप अपने पल्ले से ये बात या फिर पल्लू से ये बात बांध लें कि रोज चंद लम्हे आपने अपने साथ जरूर गुजारने हैं। रोज की बुनियाद पे अपने दिल से एक सवाल जरूर करना है, आज मैंने क्या खोया और क्या पाया है। हर रोज किसी न किसी पर एक एहसान जरूर करना है, जिसको एहसान समझते हैं हम, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। अभी मैंने आपको बताया ना, जमाने भर की बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों के साथ इंसान बाज़ोकात आता है। मैं अपनी मिसाल देता हूं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, है ना। तो जब मैं यहाँ पे आया और मुझे पॉजिटिव वाइब बादल भाई की मिली और वो आंखें, वो चमक, वो खूबसूरती, तो मुझे महसूस हुआ कि कैसे मेरी ये रात बन गई, कैसे ये मेरा दिन बन गया, कैसे मेरा अंदर खुश हो गया, बुझा हुआ नहीं रहा, जल उठा, जगमगा उठा।
हर रोज किसी ना किसी को माफ जरूर करना है। अगर वो माफी सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही क्यों ना हो, आपने माफ जरूर करना है। हर रोज अपने तख्लीककार को याद करना है, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से, मन से। और सबसे बढ़कर ये बात याद रखनी है, रोज ये बात याद करनी है कि ये जो जगह है ना, जिसे दुनिया कहते हैं, ये जो प्लैनेट है, इस पे ये जो डिवाइस है हमारी बॉडी की सूरत में, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये डिवाइस जब भी उसकी तरफ से बुलावा आएगा, इस डिवाइस को छोड़कर रूह को जाना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो फिर ये जो एक डिवाइस है, इसको बेहतर करने के लिए, दूसरों की नजरों में इसको खूबसूरत बनाने के लिए करें, लेकिन करने के लिए अपने अंदर की आवाज को खत्म मत करें, अपने आप को बर्बाद मत करें। कामयाब होने की एक शक्ल बर्बादी भी हो सकती है।

बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि इंसान उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर गुम नहीं होता, दूर नहीं होता, उस वक्त तक अपने असल से दूर बिल्कुल नहीं होता जब तक उसके अंदर वापस पलटने की, लौटने की ख्वाहिश जिंदा रहती है। याद रखिएगा। बहरहाल तख्लीककार आपको आपकी हकीकत, आपका असल पहचानने में मदद दे, आपके दिलों को जिंदा रखने में, आपकी रूह को पाकीजा बनाने में और इस दुनिया की चमक दमक में अपनी असल को महफूज रखने की कोशिश में मदद अता करे आपको आपका तख्लीककार। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है और आपसे इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफला मकतब समझकर, ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूं, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशले राह हो गई तो यहां पे आने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है। आखिर में जाते हुए सिर्फ नाम शामिल करूंगा आपके, जो मैसेजेस है वो कल प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, ठीक है ना। कल रात 12 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होने वाली है। फैसल अब्बास, बिनते सिद्दीक, अमल हबीब, माहजबीन, जावेद अख्तर, सर जावेद अख्तर हमारे साबिक कंट्रोलर रह चुके हैं, सर आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। और नजाकत शकीला साहिबा के हस्बैंड भी हैं और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मलिक अरसल नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। मरीना बहुत बहुत शुक्रिया। रजा खान थैंक यू वेरी मच। मलिक मोहम्मद आदिल बहुत बहुत शुक्रिया। अली हैदर जुनेजो हमारे साथ हैं। ताहिरा मसूद साहिबा हमारे साथ हैं। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ मौजूद, थैंक यू वेरी मच। सज्जाद अली लाडला, इस्माइल मलिक थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें। बिनते सिद्दीक के बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माहजबीन के मैसेजेस हैं, ताहिरा मसूद साहिबा के, अली हैदर साहब के, मुंडा सियालकोटी के बहुत बहुत सारे मैसेजेस हैं। उस्मान बिन इमदाद सऊदी अरब से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। खुश रहें, आबाद रहें, जब आप आएंगे तो मिलिएगा, ऐसा लगेगा कि उस मुल्क की फिजा यहाँ पे भी आई है। अमल हबीब के बहुत सारे मैसेजेस हैं, सज्जाद अली लाडला के बहुत सारे मैसेजेस हैं, थैंक यू वेरी मच। कल प्रोग्राम में सारे मैसेजेस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अगर सांसों ने वफा की, दोबारा मिलने का मौका मिला तो जरूर सारे मैसेजेस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इस एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा।

बहरहाल डॉक्टर राबिया, आपने नज़्म भेजी है, लेकिन मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ कि जितनी आपने भेजी है यही पढ़ पाऊंगा। मुझे अभी ये मिली नहीं, मेरी लाइब्रेरी में कहीं बहुत बहुत नीचे है। बहरहाल तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीख राहों पे मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है अगर शौक के सिलसिले हिजर की कत्ल गाहों से जा मिले। आगे आगे क्या था, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे इल्म और निकलेंगे अशाक के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले, दर्द के फासले कर चले। जिनकी खातिर जहांगीर हम जा गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। ठीक है, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन मुझे लगता है इतना इतना ही याद था मुझे। कल रात 12 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हामी नासर।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।